नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट, यानी कि मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन।

आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट, यानी कि मैं। इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट, यानी कि मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक बांसुरी और मंजीरी की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम 9 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम घूमर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य, संस्कृति और त्योहार को लेकर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्रोता साथियों, आप सुनेंगे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जहां हम बात करेंगे उन सपनों की जो आंखों में बसते हैं, दिल में धड़कते हैं और जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। तो इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर हमारे रेडियो साथी के साथ में। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बताए ली हो, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10 बजे और 10 बजे कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच, आप कहिए हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10 बजे और इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी। 12:00 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234। और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है, तो जुड़े रहिए वागर रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो साथियों, ये थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई बड़े हुए पाठों को

उदाहरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, यह आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए।

भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
2: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
1: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है। जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
2: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
1: ये हुई ना बात गोरी।
3: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा
1: नमस्कार।
2: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं जो हर घर हर गली हर बच्चे से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे स्वच्छता और बचपन को लेकर।
2: बिल्कुल
0: कशिश, हम देखते हैं कि बचपन जीवन का सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण दौर होता है। इसी समय बच्चे सीखते हैं कैसे रहना है, क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है।
2: जी जी
0: श्रोता साथियों, अगर इस उम्र में स्वच्छता की आदत डाल दी जाए तो यह जीवन भर साथ रहती है। हम देखते हैं कशिश के बचपन को कच्ची मिट्टी की तरह कहा जाता है।
2: जी जी,
0: जैसा ढालेंगे वैसा बन जाएगा। स्वच्छता केवल श्रोता साथी सफाई नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। साफ हाथ, कम बीमारियां, साफ घर, स्वस्थ परिवार, साफ वातावरण, खुशहाल बचपन। अगर बच्चा शुरू से ही साफ सफाई की आदत सीखता है तो वह न केवल खुद स्वस्थ रहता है बल्कि समाज को भी स्वस्थ बनाए रखने में योगदान देता है।
2: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
0: जी हाँ,
2: तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ गीत सुनवाएं हम।
3: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो

0: इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि साथियों गीत से पहले विषय बता ही चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम बात करने वाले हैं स्वच्छता और बचपन पर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम कह सकते हैं कि स्वच्छता का अर्थ होता है साफ सफाई रखना। यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है साथियों, खासकर बचपन में स्वच्छता की आदत डालना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बचपन वह समय होता है कशिश जब बच्चे सीखते हैं वही आदत उनके पूरे जीवन में बनी रहती है। अगर बच्चों को शुरुआत से ही स्वच्छता की शिक्षा दी जाए साथियों, तो वे स्वच्छ और खुश जीवन जी सकते हैं।
1: बिल्कुल रीना, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि बचपन जीवन की सबसे सुंदर, सबसे कोमल और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है।
2: बिल्कुल,
1: जैसा कि आपने बताया कि इसी समय बच्चों में अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें विकसित की जाती है।
0: जी
1: अंजलि जी, स्वच्छता जो है जिसको लेकर आज हम बात कर रहे हैं, वो केवल शरीर या कपड़ों की सफाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए।
2: बिल्कुल,
1: यह हमारे घर, विद्यालय, आसपास की वातावरण, विचारों और व्यवहार की भी सफाई है साथियों। क्योंकि स्वच्छता एक आदत होती है, एक संस्कार होते हैं जो बचपन से ही बच्चों को भी सिखाए जाने चाहिए।
2: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि आज के समय में जब बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, तब पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है।
2: बिल्कुल,
1: और बच्चे मोबाइल और डिजिटल दुनिया में अधिक समय बिताने लगे हैं।
2: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा, हम देखते हैं कि स्वच्छता हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बीमारियों से बचाव अगर हम बच्चों का नहीं करेंगे

0: जुखाम हो जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: हाथ धोने की आदत से लगभग हम कह सकते हैं कि 50% तक बीमारियां रोकी जा सकती है। साफ सुथरा वातावरण बच्चों के दिमाग को शांत और एकाग्र बनाता है।
1: जी
0: श्रोता साथियों, जो बच्चा साफ सुथरा रहता है वह दूसरों के बीच आत्मविश्वास से भरा होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों को स्वच्छता की आदत सिखाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चे वही सीखते हैं जो वह घर में देखते हैं। अगर कशिश और रीना माता पिता खुद साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बच्चे भी नहीं सीख पाएंगे। और बच्चों को छोटे छोटे काम अगर हम देते हैं कि जैसे कि खिलौने समटना, हाथ धोना और डांट की बजाय अगर हम उन्हें प्यार से इन सारी चीजों को समझाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे जो है इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सीख पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, खाना खाने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है यह बात हम उन्हें कहानी और खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं, ताकि ये जो महत्वपूर्ण स्वच्छता का गुण है वो हमारे बच्चों के अंदर आ सके।
2: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। अगर ये हम बात करें कि बचपन में स्वच्छता के महत्व पर, तो हम कह सकते हैं कि बचपन जीवन की नींव होता है। इस समय बच्चों का शरीर और मन तेजी से विकसित होता है। कशिश, यदि बच्चे साफ सफाई का ध्यान रखते हैं साथियों, तो वे कम बीमार पड़ते हैं। गंदगी से कई तरह की बीमारियां फैलती है, जैसे कि सर्दी, खांसी, पेट दर्द, बुखार। इसलिए बच्चों को रोज नहाना, हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना और अपने आसपास साफ सफाई रखना जरूर सिखाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
2: स्वच्छता केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और विचार की भी होनी चाहिए। बच्चों को अच्छे विचार अपनाने और बुरी आदतों से दूर रहने की भी हमें शिक्षा देनी चाहिए।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। इसी के साथ कशिश कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को ये बताना चाहेंगे कि स्कूल केवल पढ़ाई का स्थान नहीं है बल्कि संस्कारों का केंद्र भी है।
1: जी
0: स्कूल में स्वच्छता

0: सकती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है और स्वच्छता और हमारे बचपन को लेकर हम बातचीत कर ही रहे हैं साथियों जी, तो ये बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी आपको सुनवाना चाहेंगे यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हीना और कशिश हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि स्वच्छता और बचपन का रिश्ता केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ, सुरक्षित और जिम्मेदार भविष्य की नींव है। जिस बच्चे का बचपन स्वच्छ वातावरण में बीतता है, उसका शरीर ही नहीं बल्कि सोच, आदतें और व्यवहार भी सकारात्मक बनते हैं।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि गंदगी केवल बीमारियां नहीं फैलाती, बल्कि धीरे धीरे बच्चों की ऊर्जा, आत्मविश्वास और सीखने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। इसलिए स्वच्छता को केवल नियम या मजबूरी मानकर नहीं, बल्कि जीवन का जरूरी हिस्सा मानकर हमें अपनाना चाहिए।
2: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। अगर ये हम बात करें कि स्वच्छ आदत कैसे विकसित करें, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों में स्वच्छता की आदत डालने के लिए माता पिता और शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें बच्चों को छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोना, रोजाना नहाना, साफ कपड़े पहनना, दांतों को साफ करना, कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना, अपने कमरे और खिलौनों को साफ रखना। कशिश, जब बच्चे इन आदतों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे यह उनकी दिनचर्या बन जाती है।
1: बिल्कुल रीना, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर शिक्षकों की भूमिका को लेकर बात करें, तो जैसा कि बताया जाता है कि विद्यालय बच्चों का दूसरा घर होता है। शिक्षक बच्चों को अंजलि जी स्वच्छता के बारे में जागरूक कर सकते हैं, जैसे कि स्कूलों में स्वच्छता अभियान चलाए जा सकते हैं
2: जी,
1: सफाई प्रतियोगिता कराई जा सकती है। साथ ही हाथ धोने की जो सही विधि होती है, वो भी रीना श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि स्कूल में बच्चों को बताया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और पर्यावरण दिवस भी मनाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रयास होते हैं साथियों, जिससे बच्चों को स्वच्छता के प्रति अवगत करवाया जाता है।
0: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि यह भी समझना जरूरी है कि स्वच्छता केवल घर के अंदर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अगर घर साफ हो लेकिन बाहर की गली, स्कूल, मैदान और पानी के स्रोत गंदे हो, तो बच्चों का स्वास्थ्य फिर भी खतरे में रहेगा। इसलिए पूरे समाज को मिलकर बच्चों के लिए स्वच्छ वातावरण तैयार करना होगा। गांव हो या शहर, हर जगह बच्चों को साफ पानी, साफ शौचालय और स्वच्छ वातावरण मिलना उनका अधिकार है।
1: बिल्कुल।
0: कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कशिश और रीना कि माता पिता, शिक्षक और समाज तीनों की जिम्मेदारी बराबर है। यदि घर में बड़े लोग खुद सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, तो बच्चों से उम्मीद करना मुश्किल है। बच्चे सुनने से ज्यादा देख कर सीखते हैं, इसलिए जरूरी है श्रोता साथियों के बड़े लोग खुद उदाहरण बने। जब परिवार मिलकर सफाई करते हैं, जब बच्चों के मन में भी यह भावना आती है कि स्वच्छता कोई बोझ नहीं बल्कि सम्मान और जिम्मेदारी की पहचान है, तो बच्चे इन कार्यों में लग जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों को केवल बड़ा नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें स्वस्थ, जिम्मेदार और स्वच्छ सोच वाला इंसान बनाएंगे। क्योंकि जब बचपन स्वच्छ होता है, तभी भविष्य भी उज्ज्वल होता है।
2: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। अगर ये हम जाने कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के संबंध के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है। अगर हम साफ सफाई रखते हैं, तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं साथियों। साफ वातावरण में रहने से कशिश, शरीर मजबूत रहता है और मन में खुशी रहती है। वही गंदगी से कीटाणु फैलते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। बच्चों के लिए तो यह और भी ज्यादा जरूरी है साथियों, क्योंकि उनका शरीर कोमल होता है और वे जल्दी संक्रमण का शिकार हो सकते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। तो दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे कि स्वच्छता केवल एक आदत नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी और एक संस्कार भी है।
2: बिल्कुल,
1: यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का बचपन स्वस्थ, खुशहाल और सुरक्षित बने, तो हमें आज से ही उन्हें साफ सफाई का महत्व समझाना होगा।
2: बिल्कुल
1: साथियों, याद रखिए कि एक स्वच्छ बच्चा ही स्वस्थ समाज और उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। घर की छोटी छोटी आदतें जैसे कि हाथ धोना, कूड़ा डस्टबिन में डालना, साफ वातावरण रखना, ये सभी चीजें बच्चों के जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है।
2: बिल्कुल,
1: याद रखिए दोस्तों, हम स्वयं स्वच्छ रहेंगे और दूसरों को भी स्वच्छ रखेंगे, अपने आसपास सफाई रखेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी स्वच्छता का सही महत्व सिखाएंगे, क्योंकि स्वस्थ बचपन ही स्वस्थ और सुंदर भारत का सपना साकार कर सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं, और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा, कैंपस बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है साथियों 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल को
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जागृति बोल, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बोन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जा

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहेगी सद्भावनाओं के विचारों से हमारी ही चेतना शुद्ध होती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि कशिश, मनुष्य का जीवन केवल शरीर से नहीं चलता बल्कि उसके विचारों भावनाओं और संस्कारों से संचालित होता है।
0: जी,
1: जिस प्रकार स्वच्छ जल शरीर को स्वस्थ रखता है उसी प्रकार अच्छे और सकारात्मक विचार मन को निर्मल बनाते हैं। आज के समय में जब समाज में तनाव, ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ बढ़ता जा रहा है तब सद्भावना का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, सद्भावना केवल दूसरों के प्रति अच्छा सोचने का नाम नहीं है बल्कि अपने भीतर प्रेम, करुणा, दया और सहनशीलता को विकसित करने की प्रक्रिया भी है।
0: जी जी,
1: जब मनुष्य के मन में सद्भावना के विचार आते हैं तब उसकी चेतना शुद्ध होने लगती है और उसका व्यक्तित्व उज्ज्वल बन जाता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा जागृति जी। तो आज के इस कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हमारी इस विषय को लेकर ढेर सारी चर्चा रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि हम दोस्तों को पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं तो क्यों ना आज भी शुरुआत पहले गीत के साथ कर ले।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो केवल समाज को ही नहीं बल्कि हमारे भीतर के संसार को भी बदलने की शक्ति रखता है। विषय है सद्भावना के विचारों से हमारी चेतना शुद्ध होती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं जागृति जी कि आज का समय तेज गति, तनाव और डिजिटल शोर का समय है। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, पहचान बनाना चाहता है, लेकिन साथियों इस दौड़ में कहीं न कहीं मनुष्य को अपने भीतर की शांति, अपने भीतर का अपनापन और संवेदनशीलता खोनी पड़ रही है। लोग बाहरी चमक में उलझते जा रहे हैं लेकिन भीतर का मन अशांत हो रहा है ये कोई नहीं देख रहा। ऐसे समय में जागृति जी सद्भावना केवल एक नैतिक शिक्षा नहीं है बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का आधार भी है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि सद्भावना का मतलब होता है दूसरों के प्रति शुभ भावना रखना, किसी के लिए बुरा न सोचना, न किसी का बुरा करना, साथ ही सहायता और प्रेम का भाव रखना। हम कह सकते हैं कि जब हमारे विचार सकारात्मक और शुभ होते हैं साथियों, तब वे केवल सामने वाले को ही नहीं प्रभावित करते बल्कि हमारी अंदर की चेतना को भी निर्मल और शांत बनाते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि सबके प्रति शुभ भावना रखना, किसी के प्रति द्वेष, घृणा या बुराई न सोचकर प्रेम और सम्मान का भाव रखना ही सद्भावना कहलाता है।
0: बिल्कुल,
1: ये मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। जिस व्यक्ति के विचार सकारात्मक होते हैं श्रोताओं, उसका व्यवहार भी मधुर होता है। ऐसे लोग समाज में सम्मान पाते हैं और हर व्यक्ति उनसे जुड़ना चाहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसके विपरीत जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए गलत सोचता है उसके मन में अशांति बनी रहती है, उसका चेहरा भी चिंता और क्रोध से भरा दिखाई देता है।
0: बिल्कुल,
1: कहा गया है कि जैसे विचार होंगे वैसे हमारे संस्कार भी बनते जाते हैं। मनुष्य की चेतना उसके विचारों से निर्मित होती है श्रोताओं। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध और नफरत हो तो चेतना दूषित हो जाती है।
0: जी,
1: ऐसे व्यक्ति को हर जगह बुराई दिखाई देती है, लेकिन जब मन में प्रेम, सहयोग और सद्भावना का भाव होता है तब चेतना शुद्ध और शांत रहती है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को मानसिक शांति देती है और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखती है, साथ ही दूसरों की सहायता करने के लिए भी तत्पर रहती है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा जागृति जी। इसी के साथ एक कहावत हम सभी ने सुनी है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि दोस्तों हमारे मन में ईर्ष्या, क्रोध, नफरत और स्वार्थ भरे हैं तो जीवन में तनाव और अशांति बढ़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वही यदि मन में दया, प्रेम, करुणा और सद्भावना है तो जीवन में संतुलन, संतोष और मानसिक शांति अपने आप ही आएगी। ऐसे में हमारे युवाओं के लिए यह विषय काफी महत्वपूर्ण है जागृति जी, क्योंकि आज की पीढ़ी समाज का भविष्य है। यदि युवा अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लेकर जाएंगे तो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों का भविष्य उज्जवल होगा।
1: बिल्कुल,
0: हम कह सकते हैं कि इसमें चेतना की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि चेतना मनुष्य की आंतरिक जागरूकता है। साथियों, यह वह शक्ति है जो हमें सही और गलत का बोध कराती है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और साथ ही हमारे व्यवहार, ये सभी हमारी चेतना से ही प्रभावित होते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि मनुष्य की चेतना उसके विचारों से निर्मित होती है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था। आज हम देखते हैं कि आज का युग प्रतियोगिता का युग है, जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हम यही बताते हैं हमारे युवा साथियों को कि श्रोता साथियों, आज का युग प्रतियोगिता का युग है। लोग आगे बढ़ने की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे दूसरों की भावनाओं को समझना ही भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: छोटी छोटी बातों पर विवाद करते हैं, कटुता रखते हैं, रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है और इसका सबसे बड़ा कारण श्रोता साथियों नकारात्मक सोच होती है। यदि मनुष्य अपने भीतर सद्भावनाओं के विचार को स्थान दे तो वह दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उनसे प्रेरणा लेना सीखेगा।
0: बिल्कुल,
1: इससे समाज में प्रेम और सहयोग का वातावरण भी बनता है। कशिश, कहा गया है कि द्वेष मिटेगा तो ही प्रेम बढ़ेगा और तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोताओं सद्भावना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो सबसे पहले उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे भीतर शांति आती है, संतोष आता है और आनंद का अनुभव होता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कशिश के सकारात्मक सोच रखने वाले लोग अधिक स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके भीतर तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है।
0: बिल्कुल,
1: इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सद्भावना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि हमारी युवा साथियों से बातचीत चल ही रही है कि सद्भावनाओं के विचार हमारी चेतना को कैसे शुद्ध करते हैं, तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातचीत का विषय था कि सद्भावनाओं के विचारों से हमारी चेतना ही शुद्ध होती है, इसको लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे।
1: बिल्कुल,
0: बातें बहुत सारी हो चुकी थी, बीच में गीत संगीत होते हैं तो हमारे युवा साथियों का भी मनोरंजन हो जाता है। कशिश
1: जी, बिल्कुल।
0: तो फिर से हम रूबरू होते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमारे श्रोता साथियों को हम बताते हैं कि साथियों, जैसा कि परिवार में सद्भावना का विशेष महत्व होता है, जिस घर में प्रेम और सम्मान सहयोग का वातावरण होता है, वहां सुख और शांति बनी रहती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं। इसके विपरीत जहां कटुता होती है, स्वार्थ होता है, वहां हमेशा तनाव और अशांति बनी रहती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए परिवार की खुशहाली के लिए सद्भावना बहुत जरूरी है। श्रोताओं, विद्यालय और समाज में भी सद्भावना का महत्व होता है। यदि एक विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करे, जाति धर्म का भेदभाव न करे, सहयोग की भावना रखे, तो विद्यालय का वातावरण भी सकारात्मक बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी प्रकार समाज में यदि लोग एक दूसरे का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, तो समाज मजबूत और

0: बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात करें तो हम देखते हैं कि मनुष्य के विचार ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यदि साथियों विचार सकारात्मक होंगे तो जीवन में उत्साह और ऊर्जा बनी रहेंगे, और यदि विचार नकारात्मक है तो व्यक्ति हर परिस्थिति में सुख दुख और असफलता ही देखेगा जागृति से।
1: बिल्कुल,
0: कई बार साथियों हम ये सोचते हैं कि केवल हमारे कर्म ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तव में कर्मों की शुरुआत विचारों से होती है। जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका व्यवहार होगा, और जैसा आपका व्यवहार होगा साथियों वैसा आपका जीवन बनेगा।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो यदि किसी युवक के मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या है तो वह कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वही युवक दूसरों के सफलता से प्रेरणा लेता है और उनके लिए शुभ सोचता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ेगी साथियों।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए ये कहा जाता है कि अच्छे विचार केवल दूसरों का नहीं बल्कि स्वयं का भी कल्याण करते हैं।
1: जी हाँ कशिश, और इसी के साथ हमें समझना होगा कि संसार में हर व्यक्ति अलग है, सबकी सोच अलग है, परिस्थितियाँ अलग है और जीवन अलग अलग है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए किसी के प्रति घृणा रखने के बजाय श्रोताओं हमें सहनशीलता और समझदारी का परिचय देना होगा। सद्भावना हमें यही सिखाती है कशिश कि हम सबको साथ लेकर चले और मानवता को सबसे ऊपर रखें।
0: बिल्कुल,
1: कहा गया है साथियों कि सबको साथ लेकर चलना हमें सीखना होगा, तभी मानवता का दीप जला सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: हम कह सकते हैं कि सद्भावना केवल एक विचार नहीं है जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, बल्कि जीवन को सुंदर बनाने वाली शक्ति है।
0: बिल्कुल,
1: ये हमारे मन को शुद्ध करती है, चेतना को उज्जवल बनाती है और समाज में प्रेम तथा शांति का वातावरण तैयार करती है। यदि हर व्यक्ति अपने मन में सद्भावनाओं के विचार को स्थान दे कशिश, तो न केवल उसका जीवन सुखमय बनेगा बल्कि पूरा समाज भी खुशहाल और शांतिपूर्ण बन जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: हमें हमेशा ये प्रयास करने होंगे श्रोताओं कि हमारे विचार सकारात्मक हो, हमारी वाणी मधुर हो और हमारा व्यवहार मानवता से भरा हो। यही सच्चे जीवन का मार्ग है। सद्भावना का जो दीप जलाता है वही अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सजाता है। मन की शुद्धि ही सबसे बड़ी पूजा है श्रोताओं, और प्रेम से भरी चेतना ही मानवता की सच्ची पूजा है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि सद्भावना रखने वाला व्यक्ति के अंदर जो है वो भीतर से मजबूत होता है। उसे किसी से तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं होती, वो दूसरों को गिराता नहीं है बल्कि स्वयं को बेहतर बनाकर आगे बढ़ना चाहता है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, ऐसे लोगों में आत्मविश्वास ज्यादा देखा जाता है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि सद्भावना रखने वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है। उसे केवल अपने लाभ की चिंता नहीं होती, वो दूसरों के बारे में पहले सोचता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि परिवार, प्रेम और विश्वास का आधार सद्भावना होती है। लेकिन यदि परिवार के सदस्यों में कटुता, स्वार्थ और अहंकार बढ़ जाए तो घर का वातावरण अशांत इससे हो जाएगा। इसलिए हम देख सकते हैं कि सद्भावना परिवार को जोड़ कर रखती है। माता पिता और बच्चों के प्रति स्नेह रहता है, बच्चों का बड़ों के प्रति सम्मान रहता है, भाई बहनों का सहयोग रहता है और कठिन समय में एक दूसरे का साथ भी हमें मिलता है साथियों।
1: बिल्कुल,
0: कहा जाता है कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ परिवार केवल एक घर नहीं बल्कि भावनाओं का सुरक्षित स्थान बन जाता है।
1: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल जागृति जी,

0: साथ ही उस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव-गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर। हिंडो स्कूल जा, अपड़े अपड़ा भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे स्तुतिश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाघ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

0: के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है, छोटी बेईमानी बड़े नुकसान कैसे करती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि हम देखते हैं अंजलि की बेईमानी चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका परिणाम हमेशा दुखद होता है। मनुष्य का जीवन विश्वास, ईमानदारी और सच्चाई पर टिका होता है।
1: बिल्कुल,
0: जब कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों में बेईमानी करना शुरू करता है तो वही आदत धीरे धीरे उसके

0: कोई दुकानदार थोड़ा कम तोल देता है, कोई विद्यार्थी नकल कर लेता है, कोई कर्मचारी समय की चोरी करता है, तो कोई झूठ बोलकर अपना फायदा उठा लेता है। अंजलि, छोटी छोटी बात देखने में बहुत मामूली लगती है हमको, परंतु इसके जो परिणाम होते हैं बहुत गंभीर होते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें होने वाली हैं कि किस तरीके से कभी कभी हम जानकर और अनजाने में छोटी छोटी बेईमानियां कर देते हैं, वो किस तरीके से नुकसानदेह हमारे लिए हो सकती है। बातें ढेर सारी कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवाना चाहेंगे।
0: जी हाँ, तो आइए साथी सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में, आपकी अपने साथी जागृति भट्ट और

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था और हमारी बातचीत भी रही थी कि आज हमारा बातचीत करने का विषय है छोटी बेईमानी बड़े नुकसान कैसे करती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि अंजलि कहा गया है कि छोटी बेईमानी की आदत जीवन में हमारी बहुत बड़ी आफत बन जाती है। छोटी बेईमानी वो होती है जिसमें व्यक्ति ये सोचकर गलत काम करता है कि इससे किसी को अधिक नुकसान नहीं होगा। जैसे बस का टिकट न लेना, स्कूल में होमवर्क के बारे में झूठ बोलना, दुकान में गलत पैसे वापस मिलने पर चुप रह जाना या किसी का सामान बिना पूछे इस्तेमाल करना। लोग अक्सर इन बातों को मजाक या चतुराई समझ लेते हैं, लेकिन श्रोताओं, यही छोटी आदतें धीरे धीरे मनुष्य के संस्कारों को कमजोर करती है।
1: बिल्कुल,
0: जब व्यक्ति बार बार छोटे झूठ और छोटी धोखाधड़ी करता है तो उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है, फिर वो बड़े गलत काम करने में भी संकोच नहीं करता।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि एक छोटी सी दरार अगर समय पर न भरी जाए तो पूरी दीवार गिरा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: उसी तरह श्रोता साथियों, छोटी बेईमानी भी धीरे धीरे परिवार, समाज और देश की नींव को कमजोर कर देती है। ईमानदारी सिर्फ पैसों से जुड़ी नहीं होती है, बल्कि ये इंसान के चरित्र, भरोसे और जिम्मेदारी से भी जुड़ी होती है।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में जागृति जी, लोग अक्सर कहते हैं कि सब ऐसा ही करते हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है। श्रोता साथियों, इतनी सी बात से क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें हम अक्सर कहते रहते हैं, लेकिन यही सोच आगे चलकर बड़ी समस्याओं को जन्म देती है। सामुदायिक जीवन में विश्वास सबसे

0: पूंजी होता है। वो छोटी बेईमानी इसे विश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जैसा कि जागृति जी आपने बताया कि बेईमानी वो होती है जहाँ बहुत सी बार झूठ बोलने पर लोगों को फायदा हो जाता है, लोग काम चोरी करने लगते हैं। हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी काम शुरुआत में हमें छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें हमारी आदत बन जाती है।
1: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि जैसा कि अभी आपने कहा था कि ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा धन है, छोटी बेईमानी सबसे पहले व्यक्ति के चरित्र को कमजोर करती है। जब इंसान छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है तो उसकी सच्चाई पर लोगों का भरोसा कम होने लगता है। श्रोताओं, एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा पाना बहुत कठिन होता है। परिवार, मित्र और समाज ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं, धीरे धीरे वो अकेला पड़ जाता है। आज हम देखते हैं कि कई लोग ये सोचते हैं कि सब करते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, जैसा कि अभी आपने कहा था।
0: बिल्कुल।
1: और यही सोच समाज में नैतिकता को खत्म कर रही है। श्रोताओं, आज हम देखते हैं कि विद्यालय बच्चों के चरित्र निर्माण का स्थान होता है। यदि विद्यार्थी छोटी उम्र में ही नकल करना, झूठ बोलना या दूसरों का काम अपना बताना सीख जाए तो आगे चलकर यही आदत उसके भविष्य को भी नुकसान पहुंचाती है।
0: बिल्कुल।
1: यही अगर व्यापार की बात करें अंजलि, तो व्यापार विश्वास पर चलता है। यदि दुकानदार थोड़ा कम तोल दे, नकली सामान बेच दे या ग्राहक से झूठ बोले तो शुरुआत में उसे थोड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन समय के साथ उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। जब ग्राहक का भरोसा टूटता है तो व्यापारी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: कई बड़े व्यापार केवल इसीलिए बंद हो जाते हैं श्रोताओं, क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी बेईमानियां की है।
0: बिल्कुल।
1: सच्चा व्यापार वही होता है जो ग्राहक के विश्वास को सबसे अधिक महत्व दे। ईमानदारी से कमाया गया धन हमेशा सुख और सम्मान देता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि समाज भरोसे पर चलता है। जब लोग एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देते हैं तो रिश्ते कमजोर होने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि अगर मरीज डॉक्टर पर भरोसा न करे, किसान व्यापारी पर भरोसा न करे, ग्राहक दुकानदार पर भरोसा न करे और जनता सरकारी व्यवस्था पर भरोसा न करे तो समाज में हर जगह डर और संदेह फैल जाएगा। छोटी बेईमानियां लोगों के मन में यह भाव पैदा करती है कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही सोच सामाजिक दूरी और तनाव बढ़ाती है। जब परिवार में छोटी बेईमानियां शुरू होती है जागृति जी, तो रिश्तों में दरार आती है, जिससे बच्चों से झूठ बोलना, पैसों की बात छिपाना, जिम्मेदारी से बचना, वादे पूरे न करना। श्रोता साथियों, कहना चाहूंगी कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। अगर माता पिता छोटी बेईमानी को सामान्य मानते हैं तो बच्चे भी उसी राह पर चल पड़ते हैं।
1: बिल्कुल।
0: धीरे धीरे परिवार में विश्वास खत्म होने लगता है और रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: नुकसान होता है।
1: बिल्कुल,
0: धीरे धीरे मेहनती लोगों का मनोबल भी टूटने लगता है।
1: जी हाँ अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, आज के युवा देश का भविष्य है। यदि युवा छोटी बेईमानी से बचना सीख जाए अंजलि, तो वे अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: सफलता का असली अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं है श्रोताओं, बल्कि सम्मान और विश्वास अर्जित करना है। श्रोताओं, आपको चाहिए कि हम हर परिस्थिति में सच्चाई का साथ दें, चाहे परीक्षा हो, नौकरी हो या व्यापार। ईमानदारी हमेशा सबसे मजबूत आधार होती है।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति छोटी गलतियों को भी गंभीरता से लेता है, वही आगे चलकर महान इंसान बनता है। एक कहानी के माध्यम से अंजलि हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि एक गाँव में एक रमेश नाम का लड़का था। उसकी एक दुकान थी। शुरुआत में वो बहुत ईमानदार था।
0: बिल्कुल,
1: लोग उसकी दुकान पर भरोसा करते थे। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि अगर वो थोड़ा कम तोल देगा तो उसे अधिक फायदा होगा। शुरुआत में किसी को पता नहीं चला। रमेश को लगा कि ये छोटी सी चालाकी है। धीरे धीरे उसने नकली सामान बेचना भी शुरू कर दिया। कुछ समय बाद ग्राहकों को उसकी सच्चाई पता चल गई।
0: बिल्कुल,
1: गांव वालों ने उसकी दुकान पर जाना बंद कर दिया। रमेश का व्यापार ठप हो गया। उसे समझ आया कि थोड़े लाभ के लालच में उसने अपना सम्मान और विश्वास दोनों खो दिया है। उसने गांव वालों से माफी मांगी और फिर से ईमानदारी से काम करना शुरू किया।
0: बिल्कुल,
1: धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस लौटा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटी बेईमानी तुरंत फायदा दे सकती है, लेकिन अंत में बहुत बड़ा नुकसान भी करवाती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए कहा गया है कि क्षणिक लाभ के लालच में हमें अपने जीवन का जो मान है उसे नहीं खोना चाहिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, शुरुआत में इंसान डरता है, लेकिन जब उसे कोई रोकता नहीं है तो वह गलती आदत बन जाती है।
1: बिल्कुल,
0: धीरे धीरे इंसान अपने गलत काम को सही ठहराने लगता है कि सब ऐसा करते हैं, थोड़ा बहुत चलता है, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। श्रोता साथियों, यही सोच व्यक्ति के चरित्र को कमजोर करती है। यही अब बात आती है कि ईमानदारी क्यों जरूरी है। तो श्रोता साथियों, ईमानदारी सिर्फ नैतिकता नहीं बल्कि समाज की ताकत है। ईमानदार व्यक्ति भरोसेमंद होता है, सम्मान पाता है, रिश्तों को खूबसूरत रखता है, समाज में अच्छा उदाहरण बनता है। ईमानदारी से कमाया गया छोटा सम्मान भी बेईमानी से कमाए गए बड़े लाभ से ज्यादा मूल्यवान है।
1: बिल्कुल,
0: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बेईमानी रोकने के लिए हमें छोटे छोटे उपाय अपनाने होंगे। इसके लिए हमें घर में अच्छा वातावरण पेश करना होगा। छोटी गलतियों को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। मेहनत और सच्चाई से सम्मान देना है। जिम्मेदारी की भावनाओं को बढ़ावा देना है और सामुदायिक जागरूकता फैलानी है। तभी जागृति जी, हम ईमानदारी को अपना सकते हैं और अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक कर सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, बेईमानी करने वाला व्यक्ति कभी पूरी तरह शांत नहीं रह सकता। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए। यही डर मानसिक तनाव पैदा करता है। ईमानदार व्यक्ति भले ही कम धन कमाए, लेकिन वो चैन की नींद सोता है। उसके मन में अपराध बोध नहीं होता। सच्चाई मन को हल्का और जीवन को सुखी बनाती है। इसी के साथ आपको कहना चाहेंगे श्रोताओं कि छोटी बेईमानी कभी छोटी नहीं होती। वो धीरे धीरे इंसान की आदत, चरित्र और समाज को नुकसान पहुंचाती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि हम आपको कार्यक्रम के माध्यम से यही बात बता रहे हैं। शुरुआत में इसका प्रभाव कम दिखाई देता है अंजलि, लेकिन समय के साथ वो बड़े संकट का रूप लेती है।
0: जी जी,
1: इसलिए हमें अपने जीवन में छोटी से छोटी बात में भी ईमानदारी अपनानी होगी, चाहे कोई देखे या न देखे। सही काम करना ही सच्ची महानता है। यदि हर व्यक्ति संकल्प ले कि वो छोटी बेईमानी भी नहीं करेगा, तो समाज में विश्वास, शांति और खुशहाली बढ़ेगी। यही एक अच्छे नागरिक और मजबूत राष्ट्र की पहचान है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। इसी के साथ श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि छोटी बेईमानियां देखने में मामूली लग सकती हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। ये धीरे धीरे विश्वास को खत्म करती हैं, रिश्तों को कमजोर करती हैं और समाज को अंदर से खोखला कर देती हैं। श्रोता साथियों, एक मजबूत समाज की शुरुआत बड़े भाषणों से नहीं बल्कि छोटी छोटी ईमानदार आदतों से होती है।
1: बिल्कुल,
0: जब व्यक्ति अपने व्यवहार में सच्चाई लाता है, तभी परिवार मजबूत होता है, समाज सुरक्षित बनता है और देश आगे बढ़ता है। हमें ये समझना होगा श्रोता साथियों कि थोड़ी सी बेईमानी वास्तव में कभी छोटी नहीं होती। हर छोटा गलत कदम भविष्य में बड़ी समस्या बन सकता है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भरोसे, सम्मान और सच्चाई वाले समाज में जिए, तो हमें आज से ही छोटी बेईमानियों को रोकना होगा और ईमानदारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा हम जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vangdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेषर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: सेहत ने राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

0: जागृति बुन, आपके कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है।
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अंजलि बोल गीत तो आई शुक्र ननस की था पड़ो सूटो उम्मीद करा कि जे बातें भी कार्यक्रम घूमर में ई आपी बोनो ने कमी होगा बोने आपने वालो आज नो कार्यक्रम केवो लाग्यो एना पर मैं आप राय सुझाव आली शको आपड़े आना पता हते
1: होवे बोने लखी लो अमरु पतु है कार्यक्रम घूमर वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान अमारो पिन कोड नंबर है 3200001 अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमर अना फोन नंबर माते अमारो फोन नंबर है 9460051234
0: तो बोने फेरी मलंगा अनास कार्यक्रम में एक ना विषय ने हाते तार हुदी
1: राम राम राम राम, राम, राम।

0: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
1: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
0: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है। जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
1: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
0: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, रास्ते बंद नहीं होते, सोच बंद हो जाती है। जहां समाधान की रोशनी हो, वहीं से नई शुरुआत होती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं साथियों कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वॉकर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हम हमेशा एक नए विषय को लेकर हाजिर होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो धीरे धीरे इंसान की सोच, व्यवहार और पूरा जीवन बदल सकती है। जी हाँ, समाधान सोचने की आदत। अक्सर साथियों, जब कोई समस्या आती है तो हमारा ध्यान तुरंत समस्या पर चला जाता है। हम ये सोचते हैं कि अब क्या होगा, इतनी परेशानी क्यों आई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है, और यही से फर्क शुरू होता है। समस्या सबके जीवन में आती है साथियों, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो समस्या में फंसता नहीं, समाधान खोजता है। तो आज बातें इस विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम आप सभी को सुनवाएंगे। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि आज हम बात कर रहे हैं समाधान सोचने की आदत को लेकर। जी हाँ साथियों, कई बार समस्या उतनी बड़ी होती नहीं है जितनी हमारी चिंता उसे बना देती है। जब हम बार बार समस्या को ही सोचते रहते हैं तो मन डर से भर जाता है, लेकिन जब हम सोचते हैं तो मन में रास्ता बनता है। यानी कि दोस्तों, समस्या दीवार दिखाती है, समाधान दरवाजा खोलता है। यानी कि बहुत सी बार हम देखते हैं कि समाधान सोचने वाले लोग अलग करते क्या हैं अपने जीवन में। तो साथियों बताना चाहूंगी, वे समस्या से घबराते वबराते नहीं है, पहले समझते हैं कि आखिरकार समस्या क्या है। वे पूछते हैं कि ये क्यों हुआ, इससे निकलने का पहला कदम क्या हो सकता है, मैं क्या बदल सकता हूँ। यही सोच धीरे धीरे आदत बनती है। साथियों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक किसान के खेत में पानी की कमी हो गई। कुछ लोगों ने उससे कहा कि अब फसल खराब हो जाएगी, लेकिन किसान बैठा नहीं। उसने खेत के पास छोटी नाली बनाई, बरसात का पानी रोकना शुरू किया और अगली फसल पहले से बेहतर हुई। फर्क क्या था साथियों? समस्या सबने देखी, लेकिन समाधान एक ने सोचा। इसलिए कहना चाहूंगी कि जहां लोग रुकावट देखते हैं, वहीं कुछ लोग रास्ता बना लेते हैं। इसलिए साथियों, समाधान सोचने की आदत ही हमारे जीवन को बदल सकती है। वो कैसे बदल सकती है? तो दोस्तों, डर को हमें कम करना होगा। जब हल पर ध्यान होता है तो घबराहट कम होती है। हर हल निकलेगा यह भरोसा होना भी बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है ना कि हम किसी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, तब तक कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज का हल नहीं निकल सकता। इसी के साथ समाधान जो है वो रिश्ते सुधारते हैं। यानी ये झगड़ों में दोष ढूंढने के बजाय हल अगर हम सोचेंगे तो आधी लड़ाई हमारे जीवन की यूं ही खत्म हो जाती है। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि जो हर मुश्किल में रास्ता खोजता है वह कभी भी जीवन में रुकता नहीं है। इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में हमें शिकायत कम, सवाल ज्यादा करने हैं। क्यों हुआ से आगे अब क्या करें, हमें ये सोचना है। छोटी समस्याओं के छोटे हल खुद निकालने चाहिए दोस्तों। दूसरों की मदद से हमें सीख लेनी है। जल्दबाजी नहीं, समझदारी से सोचें। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि समाधान सोचने वाले लोग हालात के गुलाम नहीं, दिशा के निर्माता बनते हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें चल रही हैं हमारी आपसे। आगे भी कुछ बातें हैं जो यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से हम रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि हम समाधान को लेकर ढेर सारी बातें कर रहे हैं, तो श्रोता साथियों, हमारे लिए समझना जरूरी है कि समाधान सोचने की आदत केवल समस्याओं को हल करने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक परिपक्व दृष्टि है। यह आदत इंसान को हर कठिनाइयों के सामने टूटने के बजाय संभलना सिखाती है। जब व्यक्ति समस्याओं को अंत नहीं बल्कि एक स्थिति मानकर उसके हल की दिशा में सोचता है ना दोस्तों, तभी उसके भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और आगे बढ़ने की शक्ति विकसित होती है। समाधान पर केंद्रित सोच का सबसे बड़ा प्रभाव यह है साथियों कि यह व्यक्ति को निराशा से बाहर निकालती है। जो मन केवल परेशानियों को देखता है वह जल्दी थक जाता है, लेकिन जो मन संभावनाएं खोजता है वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत बनाए रखता है। यही सोच दोस्तों धीरे धीरे व्यवहार बदलती है, निर्णयों को बेहतर बनाती है और जीवन को बोझ से अवसर की ओर ले जाती है। श्रोता साथियों, यह भी सच है कि हर समस्या का हल तुरंत तो नहीं मिलता, लेकिन समाधान सोचने की आदत व्यक्ति को धैर्य रखना सिखाती है। वह जानता है कि रास्ता देर से मिल सकता है, लेकिन मिलेगा अवश्य। यही विश्वास संघर्ष के समय सबसे बड़ी पूंजी बनता है हमारी, और यही विश्वास

व्यक्ति को शिकायत करने वाला नहीं दोस्तों, बल्कि कोशिश करने वाला बनाता है। समाज और समुदाय के स्तर पर भी यह सोच उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब लोग समस्या पर चर्चा से आगे बढ़कर समाधान पर विचार करने लगते हैं, तभी सामूहिक बदलाव संभव होता है। परिवार मजबूत होते हैं, समुदाय सहयोगी बनते हैं और विकास की राह खुलती है। इसी दृष्टि से समाधान की सोच केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, सामाजिक शक्ति भी है। इसलिए जीवन बदलने के लिए हमेशा बड़े संसाधन नहीं चाहिए होते हैं, कई बार सिर्फ सोच बदलने की जरूरत होती है। और जब सोच समस्या पर रुकने के बजाय समाधान की ओर बढ़ती है, तभी जीवन में नई दिशा, नया साहस और नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। श्रोता साथियों, समाधान सोचने की आदत जीवन इसलिए बदलती है क्योंकि यह मुश्किलों को खत्म नहीं करती, बल्कि उनसे निपटने की हमारी क्षमता को मजबूत करती है। जहाँ समाधान की सोच जीवित रहती है, वहाँ उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने का समय हो चला है। मैं आपसे विदा अवश्य लूंगी, लेकिन जाने से पहले मैं कार्यक्रम का पता बताना चाहूंगी, ताकि आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: भाइयों ने बोलो, जेवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नदी माँ जंगल थकी जरूर बोनों रिश्तों है। जे जंगल में हमसे हैं ई इन्होंने रक्षा करे हैं। तो आवो बोलनी भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगलों भविष्य सुरक्षित करा। बोलनी आवाज विकास की असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि सादगी भरा जीवन क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि आज का समय जो है वो तेजी से बदलती जीवन शैली, बढ़ती प्रति स्पर्धा और दिखावे की संस्कृति का समय बनता जा रहा है।
0: जी हाँ,
1: लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में इतने व्यस्त हो गए हैं श्रोता साथियों कि कई बार वे सुकून, संतुलन और संतोष जैसी महत्वपूर्ण चीजों को पीछे छोड़ देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियाँ, दिखावटी खर्च और दूसरों से आगे निकलने की होड़ ने जीवन को जटिल बना दिया है। ऐसे समय में श्रोता साथियों, सादगी भरा जीवन केवल एक आदत नहीं बल्कि मानसिक शांति और संतुलन समाज की जरूरत बन गया है।
0: जी जी,
1: सादगी का अर्थ गरीबी या अभाव नहीं होता बल्कि सादगी का मतलब होता है जरूरत और लालच के बीच का अंतर समझना, जीवन को अनावश्यक दिखावे से दूर रखना और सरलता के साथ जीना। श्रोता साथियों, सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना चाहता है।
0: जी हाँ,
1: वह दूसरों को प्रभावित करने के बजाय अपने जीवन को संतुलित और शांत बनाने पर ध्यान देता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी,
1: समाज में तनाव, आर्थिक दबाव, रिश्तों में दूरी और मानसिक थकान बढ़ने का एक कारण यह भी है कि लोग अपनी वास्तविक जरूरतों से ज्यादा दिखावे और तुलना में उलझते जा रहे हैं।
0: जी जी,
1: इसलिए सादगी भरा जीवन जो है उसका महत्व समझना हमारे लिए आज बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम पहले गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ साथियों,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहेंगे हम कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि विषय गीत से पहले बता दिया कि बात कर रहे हैं सादगी भरा जीवन क्यों जरूरी है। जैसा कि अंजलि जी, हम सभी जानते हैं कि आज का समय जो है वो तेज भागती दुनिया का समय है।
1: बिल्कुल,
0: हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, बहुत अधिक कमाना चाहता है, बेहतर जीवन जीना चाहता है। लेकिन इसी दौड़ में जो इंसान है वो धीरे धीरे अपने भीतर की शांति, हम जैसा कि देख रहे हैं कि खोता जा रहा है। दिखावे, प्रतिस्पर्धा या फिर अनावश्यक इच्छाओं ने जीवन को इतना उलझा दिया है अंजलि जी, कि लोग जो है वो सुविधाओं के बीच रहते हुए भी संतुष्टि महसूस नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि ऐसे समय में सादगी भरा जीवन उनके लिए एक नई रोशनी की तरह हो सकता है, क्योंकि सादगी केवल साधारण कपड़े पहनने या कर्म कम खर्च करने का नाम नहीं है दोस्तों। सादगी एक ऐसी सोच है जो एक जीवन शैली है जो हमें शांत, संतुलित और संतुष्ट बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं अंजलि जी की सादगी हमें ये सिखाती है कि जीवन की असली खुशी बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि भीतर की शांति में होती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, सादगी का मतलब होता है सरल सोच, संतुलित खर्च, विनम्र व्यवहार, जरूरत के अनुसार जीवन, दिखावे से दूरी, संतोष और संयम।
0: जी
1: जी, साथियों सादगी केवल कपड़ों या रहन सहन तक सीमित नहीं होती बल्कि यह सोच और व्यवहार में दिखाई देती है। आज कई लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों को प्रभावित करने में लगे रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: महंगे सामान खरीदना, सोशल मीडिया पर दिखावा करना, जरूरत से ज्यादा खर्च करना और दूसरों से तुलना करना। श्रोता साथियों, ये सब धीरे धीरे तनाव और असंतोष को बढ़ाते हैं।
0: जी हाँ,
1: कई परिवार केवल समाज में दिखाने के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर देते हैं।

0: है जिससे आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जो व्यक्ति सादगी से जीवन जीता है उसके मन में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा कम होती है, उसे हर समय ये चिंता नहीं रहती कि लोग क्या सोचेंगे, किसके पास क्या है, मुझे दूसरों जैसा दिखना है। ऐसा जो व्यक्ति होता है कशिश, वो छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करता है। सादगी मन को हल्का और शांत रखती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आज कई लोग दिखावे और अनियोजित खर्च के कारण आर्थिक परेशानी में फंस जाते हैं।
1: जी।
0: सादगी भरा जीवन अनावश्यक खर्च कम करता है, बचत की आदत बढ़ाता है और भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करता है।
1: बिल्कुल,
0: कह सकते हैं कशिश कार्यक्रम के माध्यम से कि जो व्यक्ति अपनी जरूरत और इच्छा में फर्क समझता है वह आर्थिक रूप से अधिक संतुलित रहता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि सादगी का मतलब गरीबी, लेकिन दोस्तों अगर असल में देखें तो सादगी का गरीबी से कोई संबंध ही नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: सादगी का मतलब है जरूरत के अनुसार जीवन जीना, अनावश्यक चीजों से दूरी बनाना और जीवन को सहज बनाना।
0: जी बिल्कुल।
1: हम देखते हैं अंजलि जी कि जिस व्यक्ति के विचार सरल होते हैं, व्यवहार में विनम्रता होती है और जीवन संतुलित होता है, वही वास्तव में सादगीपूर्ण जीवन जी पाता है।
0: जी हाँ कशिश,
1: सादगी इंसान को अहंकार से दूर रखती है साथियों। साथ ही वह दूसरों को प्रभावित करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ही ध्यान देता है।
0: बिल्कुल।
1: अगर कहा जाए तो सादा जीवन का मतलब है कि इंसान अपनी पहचान वस्तुओं से नहीं बल्कि अपने चरित्र और कर्मों से बनाता है।
0: बिल्कुल कशिश, जहाँ दिखावा ज्यादा होता है वहाँ कई बार रिश्तों में तुलना और अहंकार बढ़ने लगता है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन सादगी भरा जीवन अपनापन बढ़ाता है, व्यवहार को सहज बनाता है, रिश्तों में सच्चाई बनाए रखता है, क्योंकि सादगी से जीने वाले लोग अक्सर दूसरों के भावनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी,
0: कैसा कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे परिवार में दिखते हैं। अगर बच्चे बचपन से संतोष, संयम, जरूरत के अनुसार खर्च, मेहनत का महत्व सीखते हैं तो वे जिम्मेदार बनते हैं। लेकिन अगर उन्हें केवल दिखावे और महंगी चीजों की आदत पड़ जाए तो उनमें तुलना और असंतोष बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल।
0: सादगी भरा जीवन पर्यावरण की सुरक्षा में भी मदद करता है। जब लोग जरूरत के अनुसार चीजों का उपयोग करते हैं तो संसाधनों की बर्बादी कम होती है।
1: जी।
0: प्लास्टिक और कचरा कम होता है, प्रकृति पर दबाव कम पड़ता है, यानी कि कह सकते हैं कि सादगी से जो जीवन हम जीते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल अंजलि जी,
0: सादगी केवल व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जरूरी है।
1: जी हाँ अंजलि जी। अब श्रोता साथियों, प्रश्न हमारे सामने ये है कि आज के समय में सादगी को इतनी महत्वपूर्णता क्यों दी गई है, यानी कि ये क्यों जरूरी है। तो हम देखते हैं कि आज का समाज दिखावे की संस्कृति से काफी प्रभावित हो चुका है अंजलि जी। लोग अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च केवल इसलिए करते हैं ताकि समाज में उनका प्रभाव बना रहे, जैसे कि बड़े बड़े समारोह, महंगे कपड़े पहनना, जरूरत से अधिक वस्तुएं खरीदना, सोशल मीडिया पर दिखावा करना। दोस्तों ये सब मानसिक तनाव को हमारे बढ़ा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में लोग जो है वो दूसरों से तुलना करने लगते हैं और तुलना से अंजलि जी असंतोष पैदा होता है।
0: जी हाँ।
1: और असंतोष से तनाव। कह सकते हैं कि यही कारण है कि आज बहुत से लोग मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं।
0: जी जी।
1: दोस्तों सादगी जो है वो इस परेशानी का समाधान आपके लिए बन सकती है। जब इंसान अंजलि जी अपनी जरूरतों को समझकर जीवन जीता है तब वह अनावश्यक बोझ से बच पाता है।
0: बिल्कुल कशिश।
1: और उसका मन भी शांत रहता है और वो छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना भी सीख जाता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान रहे हैं कि सादगी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और ये क्यों जरूरी है अभी के समय में। तो बातें निरंतर आगे यूं ही हमारे श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से सादगी हमारे लिए और पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। यही बात करें सादगी और स्वास्थ्य की, तो श्रोता साथियों, सादा जीवन अक्सर संतुलित दिनचर्या से जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल,
0: सादा भोजन, नियमित जीवन, कम तनाव, सीमित इच्छाएं, ये सब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। कशिश, आज कई बीमारियां तनाव और अनियमित जीवन शैली से जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल,
0: सादगी इन समस्याओं को कम करने में मदद कर सकती है। कहना
1: हाँ।
0: चाहेंगे श्रोता साथियों कि पहले के समय में लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन रिश्तों में अपनापन और मन में संतोष ज्यादा होता था।
1: बिल्कुल,
0: लोग एक दूसरे की मदद करते थे, जरूरत के अनुसार खर्च करते थे, सामूहिक जीवन को महत्व देते थे। आज सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन कई लोगों के जीवन से सुकून कम हो गया है।
1: बिल्कुल,
0: सोशल मीडिया ने तुलना की भावना बढ़ा दी है। लोग दूसरों की चमत्कार जो जिंदगी होती है चमकदार, उसे देखकर खुद को समझने लगे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर चीज वास्तविक नहीं होती।
1: बिल्कुल,
0: व्यक्ति को यह समझने की ताकत देती है श्रोता साथियों कि असली खुशी दिखावे में नहीं बल्कि संतुलित और शांत जीवन जीने में है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। साथियों, हम देखते हैं कि आज जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता मन की शांति है। अगर मन शांत नहीं है तो धन, सुविधा और प्रसिद्धि भी खुशी नहीं दे सकती। साथियों,
0: बिल्कुल,
1: देखा जाता है कि सादगी भरा जीवन मन को हल्का बनाता है, क्योंकि जो व्यक्ति कम इच्छाएं रखता है वह कम तनाव में रहता है। वह हर समय दूसरों को देखकर दुखी नहीं होता। साथियों, उसे अपनी परिस्थितियों में संतोष मिलता रहता है। हम देखते हैं अंजलि जी कि आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो सफलता तो पा लेते हैं लेकिन शांति खो देते हैं। उनकी जिंदगी भागदौड़ और चिंता से बढ़ जाती है। और वहीं इसके विपरीत जो सादगीपूर्ण व्यक्ति है, वो जीवन जीने वाला जो व्यक्ति होता है, वो सीमित संसाधनों में भी संतुष्ट रहता है।
0: बिल्कुल,
1: सादगी हमें ये एहसास कराती है दोस्तों कि खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होती है। साथ ही सादगीपूर्ण जीवन का हमारे स्वास्थ्य से भी गहरा संबंध है, क्योंकि जो लोग सरल जीवन जीते हैं उनका खान पान भी सामान्य और संतुलित होता है।
0: बिल्कुल,
1: वे कृत्रिम चीजों से दूर रहते हैं और प्राकृतिक जीवन अपनाते हैं।
0: बिल्कुल
1: साथियों, आज फास्ट फूड, देर रात तक जागना, ज्यादा मोबाइल का उपयोग और अनियमित दिनचर्या ने लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है।
0: जी हाँ,
1: लेकिन दोस्तों, सादा जीवन अपनाने वाला व्यक्ति जो होता है वो नियमित दिनचर्या को अपनाता है, सादा भोजन लेता है और मानसिक संतुलन को महत्व देता है।
0: बिल्कुल,
1: देखा जा सकता है कि सादा भोजन शरीर को स्वस्थ रखता है अंजलि जी, और सादे विचार मन को स्वस्थ रखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि गांव में आज भी बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो साधारण जीवन जीते हैं। उनका खान पान जो है वो काफी सरल होता है। मेहनत उनकी दिनचर्या का हिस्सा होती है दोस्तों, और वे प्रकृति के करीब रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसी कारण से उनका स्वास्थ्य अपेक्षाकृत हमसे बेहतर होता है।
0: जी हाँ कशिश, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि कई लोग सोचते हैं कि सादगी का मतलब कमजोर होना है, जबकि सच इसके विपरीत है। सादगी से जीने वाला व्यक्ति खुद को स्वीकार करता है, दिखावे के दबाव में नहीं आता, अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जीता है। श्रोता साथियों, यह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों को मजबूत बनाता है। सादगी को अपनाने के लिए हमें जरूरत और फर्क में समझना होगा।
1: बिल्कुल,
0: हर चाहत जरूरी नहीं है तो नहीं होती है। श्रोता साथियों, अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि हम कोई भी चीज अगर दूर से हमें अच्छी दिख रही हो, भले उसकी हमें जरूरत नहीं हो, हम उसे खरीदने की कोशिश करते हैं।
1: हाँ,
0: हमें इस बात को समझना होगा कि जरूरत और इच्छा में फर्क होता है। हमारे लिए जरूरत के हिसाब से जो भी चीज होती है वही हमें लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: इसके साथ तुलना कम करें, यानी कि श्रोता साथियों, हर किसी व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती है, हर किसी के व्यवहार में बदलाव भी अलग अलग होता है, उसके जीवन जीने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे में हमें खुद को किसी से कमतर नहीं आंकना है। हम जैसे हैं, हमें उसमें अगर हमारी कमियां हमें समझ में आ रही है तो उसे हमें बदलाव करने की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: हम जैसे हैं उसमें ही हमें खुद को स्वीकार करने की जरूरत है।
1: जी जी,
0: इसी के साथ खर्च की योजना बनाए, यानी कि सोच समझ कर खर्च करना जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: जब हम सोच समझ कर खर्च करते हैं तो हम हमारे जीवन को बहुत अच्छी तरीके से सुविधापूर्वक जी पाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: सरल जीवन शैली को हमें अपनाना है। सुविधाएं जरूरी हैं, लेकिन दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। महंगी चीजों से ज्यादा जरूरी होता है अपनापन, इसलिए रिश्तों और अनुभवों को हमें महत्व देना है। जब इन सारी चीजों को हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में संतोष ला पाते हैं, क्योंकि जीवन में संतोष हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ ऐसा भी बताया जाता है कि जहाँ दिखावा ज्यादा होता है वहाँ रिश्तों में सच्चाई कम होने लगती है। दोस्तों लोग एक दूसरे को बाहरी चीजों से आंकने लगते हैं,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन देखिए तो सादगीपूर्ण जीवन इंसान को विनम्र बनाता है, वह दूसरों का सम्मान करना जानता है, रिश्तों में अपनापन बनाए रखता है,
0: बिल्कुल।
1: और अंजलि जी, सादगी से भरा जो व्यक्ति है वो अपने व्यवहार से लोगों का दिल भी जीतना जानता है।
0: जी जी।
1: उसके रिश्ते स्वार्थ पर नहीं बल्कि विश्वास और प्रेम पर टिके होते हैं। हम देखते हैं कि आज हमारे सामने परिवारों में दूरियां बढ़ रही है क्योंकि लोग एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: सादा जीवन जो है साथियों, हमें ये याद दिलाता है कि जीवन की असली दौलत बाहर नहीं है बल्कि अपने ही रिश्ते हैं।
0: बिल्कुल कशिश।
1: आपने जैसा कि बताया था कि आज के युवा सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली से बहुत प्रभावित हुए हैं अंजलि जी, वे अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में महंगे कपड़े, महंगे गाड़ियां, दिखावटी जीवन देखकर युवाओं के मन में भी वैसे ही जिंदगी पाने की इच्छा पैदा होती है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग होती है।
0: जी हाँ।
1: युवाओं को बचपन से ही सादगी का महत्व सिखाया जाना चाहिए अंजलि जी, ताकि वे जीवन में संतुलित सोच विकसित कर सके और अपनी मेहनत को महत्व दे, दिखावे को नहीं।
0: बिल्कुल कशिश, एक कहानी के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को ये बात समझाना चाहेंगे। ये कहानी शुरू होती है श्रोता साथियों इस तरीके से कि गांव में राघव नाम का व्यक्ति रहता था।
1: बिल्कुल।
0: वो मेहनती था, उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी, उसकी आमदनी ठीक थी और परिवार भी खुश था।
1: जी
0: उसकी पत्नी सुनीता सरल स्वभाव की थी और हमेशा कहती थी कि जितना है उसी में खुशी ढूंढो, जरूरत से ज्यादा दिखावा कभी सुकून नहीं देता। लेकिन धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा, लोगों ने बड़े बड़े घर बनवाने शुरू किए, कोई नया मोबाइल दिखाता, कोई महंगी बाइक, सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी चमकदार जिंदगी दिखाने लगे।
1: बिल्कुल।
0: राघव के मन में भी धीरे धीरे तुलना शुरू हुई, उसे लगने लगा कि अगर उसके पास महंगी चीजें नहीं होगी तो लोग उसे कम समझेंगे। एक दिन उसने पत्नी से कहा कि अब साधारण जिंदगी से काम नहीं चलेगा, लोगों में इज्जत तभी होती है जब आमदनी बड़ा दिखे।
1: बिल्कुल।
0: सुनीता ने समझाया, इज्जत व्यवहार और ईमानदारी से दिखती है, दिखावे से नहीं।
1: जी जी।
0: लेकिन कशिश, राघव ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कर्ज लेकर नया फर्नीचर खरीदा, महंगा मोबाइल लिया और घर की सजावट पर बहुत पैसा खर्च कर दिया। गांव के लोग कुछ दिन उसकी तारीफ करते रहे। राघव को लगा कि अब वह भी बड़ा आदमी बन गया। लेकिन कुछ महीने बाद समस्या शुरू हो गई। कर्ज की किस्त बढ़ने लगी, दुकान की आमदनी उतनी नहीं थी कि खर्च संभल सके। घर में तनाव बढ़ने लगा, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। राघव रात भर जागकर हिसाब लगाता रहा। जिस दिखावे से वह खुश होना चाहता था वही अब उसके मन का बोझ बन गया था।
1: बिल्कुल।
0: एक दिन उसका बेटा स्कूल से उदास होकर आया। राघव ने पूछा, क्या हुआ? बेटे ने कहा, पापा स्कूल की फीस बाकी है। शिक्षक ने कहा कि फीस जमा नहीं हुई तो परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। यह सुनकर राघव अंदर तक टूट गया। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले उसने उसी पैसे से महंगा मोबाइल खरीदा था जो अब अलमारी में पड़ा था। उस रात वह घर के बाहर चुपचाप बैठा था, तभी गांव के बुजुर्ग रामप्रसाद जी वहां आए। उन्होंने राघव का उदास चेहरा देखा और बोला, बेटा क्या बात है? राघव की आंखें भर आई, उसने सारी परेशानी बता दी। रामप्रसाद जी मुस्कुराए और बोले, जब इंसान जरूरत से ज्यादा दूसरों को दिखाने में लग जाता है तो वह खुद से दूर होता जाता है। सादा जीवन छोटा नहीं होता दोस्तों, वह मन को हल्का रखता है।
1: बिल्कुल।
0: राघव चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। अगले दिन उसने फैसला किया कि अब वह दिखावे के लिए नहीं जिएगा। उसने अनावश्यक खर्च बंद किया, धीरे धीरे कर्ज चुकाना शुरू किया और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा। अब उसके घर में महंगी चीजें कम थी लेकिन तनाव भी कम था।
1: बिल्कुल।
0: बेटे की पढ़ाई फिर से ठीक चलने लगी, पत्नी के चेहरे पर भी सुकून लौट आया। एक शाम उसका बेटा बोला, पापा पहले घर बड़ा लगने लगा है लेकिन खुशियां छोटी हो गई थी, अब घर साधारण है लेकिन अच्छा लगता है। राघव मुस्कुरा दिया। उस दिन उसे समझ में आ गया कि सादगी का मतलब कमी नहीं होता बल्कि जीवन को अनावश्यक बोझ से बचाना होता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी।
0: सच्चा सुख दिखाने में नहीं, दिखावे में नहीं होता बल्कि शांत मन, संतोष और अपने लोगों के साथ सुकून से जीने में होता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बहुत ही अच्छी कहानी हमारे श्रोता साथियों को बताई। ऐसे में हमारे दोस्तों को हम ये कह सकते हैं कि सादगी भरा जीवन केवल एक आदत नहीं है बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक मार्ग है। साथियों, ये हमें संतोष के साथ साथ शांति, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी भी प्रदान करता है, जैसा कि हम कहानी के माध्यम से भी जान पाए। क्योंकि दोस्तों, आज जो दुनिया है वो तेजी से बदल रही है, सुविधाएं बढ़ रही है लेकिन मानसिक जो शांति है वो कहीं ना कहीं घट रही है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे समय में सादगी वह शक्ति है साथियों जो हमें भीतर से मजबूत बना सकती है।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसा कि अंजलि जी बातें कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें आगे भी जारी रहेंगी। लेकिन अभी सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, सादगी और सादा जीवन को लेकर बहुत अच्छी बातें गीत से पहले भी हमारी आपसे चल रही थी, यही अंजलि जी, अगर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो इतिहास में अनेक महान व्यक्तियों ने सादगीपूर्ण जीवन जीकर दुनिया को प्रेरणा दी है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी जी की बात करें तो दोस्तों, उन्होंने सादा जीवन अपनाकर पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्य का संदेश दिया।
1: बिल्कुल।
0: उनके पास भौतिक साधन कम थे लेकिन विचार इतने महान थे कि पूरी दुनिया उन्हें सम्मान देती है।
1: बिल्कुल।
0: वहीं लाल बहादुर शास्त्री का जीवन भी सादगी का उदाहरण है। उच्च पद होने के बावजूद भी उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। दोस्तों, इन सभी महान लोगों ने यह साबित कर दिया कि इंसान की महानता उनके कपड़ों, धन या वैभव से नहीं बल्कि उनके विचार और कर्मों से पहचानी जाती है। हम देखते हैं कि आज पर्यावरण प्रदूषण पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। ऐसे में इसका उपभोग और संसाधनों का अनावश्यक उपयोग प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। अंजलि जी, अगर बात करें तो सादा जीवन जो है वह पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करता है। साथियों, जब हम जरूरत के अनुसार वस्तुओं का उपयोग करते हैं तब प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है, जैसे कि कम प्लास्टिक का उपयोग, सादा भोजन करना, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग और फिजूल खर्ची से बचना। दोस्तों, ये सब सादगीपूर्ण जीवन के हिस्से हैं।
1: बिल्कुल।
0: यदि समाज सादगी को अपनाए अंजलि जी, तो पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा।
1: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि सादगी भरा जीवन आज के समय की एक बड़ी आवश्यकता बन चुका है। जिस दौर में लोग जरूरत से ज्यादा दिखावे, तुलना और बाहरी चमक दमक में उलझते जा रहे हैं श्रोता साथियों, वह सादगी इंसान को संतुलन और सुकून का रास्ता दिखाती है। सादा जीवन केवल खर्च करने का तरीका नहीं होता है श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे बल्कि सोच और सरल जीवन को सहज बनाना होता है।
0: बिल्कुल।
1: जब इंसान अपनी जरूरतों को समझकर जीवन जीता है तब उसके मन में अनावश्यक दबाव कम होता है।
0: जी बिल्कुल।
1: दूसरों को प्रभावित करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। कहना चाहेंगे कशिश श्रोता साथियों से कि सादगी व्यक्ति को संतोष दिखाती है और संतोष ही वह आधार है जिससे मानसिक शांति और खुशहाल जीवन की शुरुआत होती है।
0: बिल्कुल।
1: आज कई लोग श्रोता साथियों अधिक पाने की दौड़ में अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और मन की शांति को खोते जा रहे हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन सादगी हमें ये याद दिलाती है कि जीवन की असली खुशी महंगी वस्तुओं में नहीं है बल्कि अच्छे व्यवहार, सच्चे रिश्तों, स्वस्थ मन और संतुलित जीवन जीने में होती है।
0: बिल्कुल।
1: जिस घर में सादगी होती है वहाँ दिखावे का बोझ कम होता है और अपनापन ज्यादा होता है।
0: जी हाँ।
1: सादगी व्यक्ति को जिम्मेदार भी बनाती है, वह संसाधनों का सही उपयोग करना सिखाती है, फिजूल खर्ची से बचाता ही है और भविष्य के बारे में समझदारी से सोचने को मजबूर कर देती है।
0: बिल्कुल।
1: यही आदतें श्रोता साथियों परिवार को मजबूत और समाज को संतुलित बनाती है। सादा जीवन पर्यावरण की रक्षा में मदद करता है क्योंकि जब जरूरत के अनुसार कशिश उपयोग की आदत बनती है तब प्राकृतिक संसाधनों का जो दबाव है वो कम पड़ता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो सादगी का श्रोता साथियों एक बड़ा लाभ ये भी है कि वह इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है।
1: बिल्कुल।
0: यानी कि सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने मेहनत और क्षमता पर भरोसा करना जानता है। वो दूसरों को प्रभावित करने वाले जीवन नहीं जीता, वो अपनी जरूरतों को समझता है श्रोता साथियों और उसी के अनुसार ही मेहनत करता है।
1: जी हाँ।
0: देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों से जल्दी नहीं टूटता क्योंकि उसने जीवन को वास्तविक रूप से स्वीकार कर लिया होता है। अंजलि जी, अगर बात करें कि आधुनिक जीवन में सादगी के बीच संतुलन हम कैसे ला सकते हैं, तो दोस्तों आज तकनीक और आधुनिक सुविधाएं जीवन का हिस्सा जरूर बन चुकी है लेकिन इनका ज्यादा उपयोग गलत है। हम कह सकते हैं कि समस्या तब होती है जब इंसान इन सुविधाओं का गुलाम बन जाता है। दोस्तों, सादगी जो है वो हमें संतुलन सिखाती है। तकनीक का उपयोग हम करें लेकिन इतना नहीं कि परिवार और स्वास्थ्य पीछे छूट जाए।
1: बिल्कुल।
0: कह सकते हैं कि मोबाइल जरूरी है लेकिन रिश्तों से ज्यादा नहीं, पैसा जरूरी है लेकिन मानसिक शांति से बड़ा नहीं। दोस्तों
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में सादा जीवन जो है वो हमें संतुलित सोच देता है।
1: बिल्कुल कशिश, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों और युवाओं को केवल आधुनिक सुविधा ही नहीं दें बल्कि सादगी, संतोष और संयम जैसे जीवन मूल्य भी सिखाएं।
0: बिल्कुल।
1: इंसान की पहचान उसके दिखावे से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और सोच से होती है, इसलिए कहा जा सकता है कि सादगी जीवन को छोटा नहीं बनाती बल्कि उसे अधिक शांत, स्थिर और अर्थपूर्ण बनाती है। जो व्यक्ति सादगी को अपनाता है वह जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीख जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और यही समझ इंसान को भीतर से मजबूत और वास्तव में समृद्ध बनाती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि खुशी केवल धन और वैभव में ही है, लेकिन दोस्तों जीवन का अनुभव ये बताता है कि सच्ची खुशी संतोष में मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि एक व्यक्ति जिसके पास बहुत धन है लेकिन मन में शांति नहीं है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। वही एक साधारण व्यक्ति जो अपने परिवार, मेहनत और रिश्तों से संतुष्ट है और वही वास्तविक खुशी महसूस करता है।
1: जी जी,
0: सादगी श्रोता साथियों हमें छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सिखाती है, जैसे कि परिवार के साथ समय बिताना, प्रकृति के करीब रहना, जरूरतमंद की मदद करना और मन की शांति को महत्व देना। अंजलि जी, हम देखते हैं कि अगर समाज में सादगी को बढ़ावा मिल जाए तो उसके ढेर सारे लाभ हो सकते हैं, जैसे कि दिखावे की होड़ कम होगी, फिजूल खर्चे रुकेगी, रिश्तों में सच्चाई बढ़ेगी, साथ ही लोगों में मानसिक तनाव जैसी समस्याएं भी कम होंगी, पर्यावरण हमारा इससे सुरक्षित रहेगा और समाज में समानता भी बढ़ेगी। अंजलि जी
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि सादगी भरा जीवन इंसान को सच्चाई के करीब ले जाता है, जहाँ दिखावे से ज्यादा महत्व मन की शांति, संतुलन और इंसानियत का होता है।
0: बिल्कुल,
1: आज दुनिया में सुविधाएं तो जरूर बढ़ गई हैं श्रोता साथियों, लेकिन इसके साथ लोगों की चिंताएं, तुलना, संतोष, असंतोष भी बढ़ गया है। ऐसे समय में सादगी केवल जीवन शैली नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण तरीका बन जाती है।
0: जी हाँ।
1: जब इंसान अपनी जरूरतों को समझकर जीवन जीता है तब वह अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और दूसरों को प्रभावित करने की दौर से बाहर निकल पाता है। उसका ध्यान बाहरी चमक पर नहीं बल्कि अपने जीवन की वास्तविक खुशियों पर केंद्रित होने लगता है।
0: बिल्कुल अंजलि,
1: समझने लगता है कशिश कि खुशी चीजों के संग्रह में नहीं बल्कि मन के संतोष में छिपी होती है। सादगी इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है, यह उसे संयम, धैर्य और जिम्मेदारी का महत्व सिखाती है।
0: जी हाँ।
1: सादगी अपनाता है वह कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखना सीख जाता है श्रोता साथियों, क्योंकि उसकी खुशी केवल बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं होती है, उसका जीवन दिखावे के बोझ से मुक्त होकर अधिक सहज और स्वाभाविक बन जाता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है, कुछ छोटी मोटी महत्वपूर्ण बातें रह गई हैं जो आगे कार्यक्रम में हम जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को एक प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: वास्तविक पहचान जीते हैं ना, उन्हें दूसरों को प्रभावित करने की चिंता कम रहती है साथियों।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अंजलि जी वे जैसे हैं वे खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं। देखते हैं कि यही सोच आत्मविश्वास पैदा करती है। देखा जाता है सादगी इंसान को नकली जीवन से दूर रखती है बल्कि असली जीवन से रूबरू करवाती है।
1: बिल्कुल,
0: आज बहुत से लोग दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाते हैं। तुलना की ये आदत दोस्तों मन में ईर्ष्या पैदा करती है, लेकिन सादगीपूर्ण सोच वाला व्यक्ति अपनी मेहनत और अपने जीवन पर ध्यान देता है। हम देख सकते हैं कि वो दूसरों की नकल करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास में लगा रहता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सादगी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। समाज के स्तर पर भी सादगी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है।
0: बिल्कुल,
1: अगर लोग दिखावे की जगह सहयोग, समझदारी और संतुलित जीवन को महत्व दें तो आर्थिक दबाव, सामाजिक तुलना और अनावश्यक खर्च जैसी जो समस्याएं हैं वो कम हो सकती हैं।
0: बिल्कुल,
1: सादगी समाज में समानता और संवेदनशीलता की भावनाओं को मजबूत करती है। प्रकृति के लिए भी सादगी आवश्यक है। जरूरत से ज्यादा उपभोग और संसाधनों की अंधाधुंध बर्बादी ने पर्यावरण पर भारी दबाव डाला। सादा जीवन इंसान को यह समझने में मदद करता है श्रोता साथियों कि सीमित संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। आज जरूरत इस बात की है श्रोता साथियों कि हम आधुनिकता को अपनाते हुए भी अपनी जीवन शैली में संतुलन बनाए रखें।
0: बिल्कुल,
1: सुविधाएं जीवन को आसान बना सकती हैं, लेकिन सुकून केवल सरलता और संतोष से मिलता है। अगर इंसान अपने मन को लालच, दिखावे और तुलना से मुक्त कर ले तो हम देखते हैं कि उसका जीवन अधिक शांत, स्वस्थ और अर्थपूर्ण बन सकता है।
0: जी बिल्कुल, सादगी
1: हमें ये सिखाती है श्रोता साथियों कि जीवन की सुंदरता अधिक पाने में नहीं बल्कि जो है उसे समझदारी, कृतज्ञता और संतोष के साथ जीने में है। और यही सोच इंसान को भीतर से समृद्ध बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: उसे ऐसा जीवन जीने की राह दिखाती है जिसमें शांति भी हो, सम्मान भी हो और सच्ची खुशी भी हो।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी हैं और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे कार्यक्रम का पता हम हमारे साथियों को बता दें ताकि हमें ये पता चल सके कि श्रोताओं को हमारा कार्यक्रम कैसा लगा।
1: बिल्कुल, तो साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों हमारी ईमेल आईडी भी लिख लीजिए, हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने दोस्त कशिश पारशर को।
2: नमस्कार
0: साथी दोस्तों, आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी साथियों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारी पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडपुर से। फिल्म का नाम है खलनायक। गीत के बोल हैं, पालकी में होके सवार चली रही है। इस गीत की फरमाइश करता है जाकिर मुलानी, समया मुलानी, सुभान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बाबा बी मुलानी, बादशाह हाजी मुलानी और मुलानी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रसाद वर्मा, मुरली चंद्र जी वर्मा और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नहेटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कोश जी मुणत। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणव श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आरुषि श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बीबी आरुषि श्रीवास। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित राज, मोनू मानस जी राज। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नरगेड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा और दिशा जी गोस्वामी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर्ष शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़, जनित कौर, गुरपीरस शब्द, लवकृत कौर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते ही अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है आशिकी, गीत की बोल है तू मेरी जिंदगी है। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू और अनुराधा जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अनु जी गोस्वामी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रहे, मेरा आप जहां जी। इस गीत के अनुरोध करता है कोका बलाई से उत्तम सिंह जंगिल, मोरज जंगिल, अनिल कुमार जंगिल, अजीत कुमार जंगिल, आरुषि जंगिल और नंदिनी जी जंगिल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से संतोष भाड़की, सुकन्या, सुनयाना और सरिता जी भाड़की। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं यतारा महाराष्ट्र से शंकर लाल जयसवाल, गणेश लाल जयसवाल, शिव प्रसाद जयसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जी जयसवाल। रघुवीर नगर दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब जी और लड्डू जी। झारखंड से जुड़ रहे हैं मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बेबी अहमद, निफरा नवाज, बेबी चाहत जी। महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, सप्रिल जी धाड़ी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तू मेरी जिंदगी है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जनकपुरी सहारनपुरा से। फिल्म का नाम है हवस, गीत के बोल हैं तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। इस गीत की फरमाइश करता है जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पॉल डिकेस्टो, विलेजी डिकेस्टो। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं राजगढ़ मध्य प्रदेश से, गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र जी डांगी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं गंजुडवारा से, मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमशुल कमर राही जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार कुरावली से, अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम जी वर्मा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हीरामणि वर्मा, पारेशमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। भेड़चौर महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रही नंदकिशोर घटी, संगीता घटी, साक्षी घटी, जयश्री मेलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिट्टू, पीबी कुतलेश जी। इसी बीच जुड़ना चाह रही हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराब जहां। जाखोत राजस्थान से जुड़ रहे हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। गीत के बोल ही ईश्वर सत्य है। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। इस गीत के अनुरोध करते हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु बब्बन, काना मीना, हरिप्रिया जी ठाकुर और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे धनुरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बीबी आलिया, आयन बाबू। इस गीत की अनुरोध करता है मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, अमित वर्मा, मास्टर समर राज आर्यन वर्मा, बेबी आरोही वर्मा, ऐशिका श्वेताजी वर्मा और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार जी, ईशान जी चीपा। कुंभार गली कोलगांव से जुड़ना चाह रहे हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही ईश्वर सत्य है।

आइए दोस्तों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सदर बाजार मारवाड़ भिलारा राजस्थान से। फिल्म का नाम है आराधना, गीत के बोल हैं कोरा कागज था ये मन मेरा। इस गीत की फरमाइश करता है रमेश चंद्र चौहान, जी नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी जी। इस गीत के अनुरोध करता है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रहे हैं पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू जी सिक्का और भाविका जी सिक्का। इसी बीच जुड़ना चाह रहे चचेरी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमांश जी। बक्सर बिहार से जुड़ना चाह रहे हैं सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सूत रमेश शाहू। बिहार से जुड़ रहे हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अंसारी, दानिश जी अंसारी। बक्सर से और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद जी आर्य। बक्सर से जुड़ रहे हैं राजी एडी अंसारी, आसमा खातून जी अंसारी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोल ही कोरा कागज था ये मन मेरा। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों लता जी और किशोर कुमार जी की आवाज़ में अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे कोरा कागज था ये मन मेरा। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है नरवेल महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है जुदाई। गीत के बोल ही मार गई मुझे तेरी जुदाई। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी और किशोर कुमार जी ने। श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर से जुड़ रहे हैं नारायण एगले, मंगला एगले, राजकुमार एगले, आशीष मेहकर जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सहारनपुर से। समेद मशरूम, साइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सदाम जी, अदीफ अली। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सिरसा से, राधेश्याम शर्मा, इंदिरा देवी शर्मा, सार्थक जी शर्मा। इस गीत की अनुरोध करता है पत्रोड से विजय अंबाटेकर, सुनीता अंबाटेकर, अक्षय अंबाटेकर, राधिका अंबाटेकर, ऋषिकेश जी अंबाटेकर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दादरी गेट भवानी से कोमल मेहरा, कृष्ण मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल जी मेहरा। छत्तीसगढ़ मदनपुर से जुड़ रहे हैं श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू, राहुल जी शाहू। पटेल नगर मालो से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार झंझोरिया, गीता रानी झंझोरिया, गंदीप झंझोरिया, गर्जू झंझोरिया, गुड्डू जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और स्वागत करती हूं आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि फरमाइश का सिलसिला हमारा आपके साथ रोजाना सोमवार से शनिवार बना रहता है सुबह 11 से

दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं, जैसा कि आज भी सिलसिला सुबह 11 बजे से बना हुआ था, जिसे आप सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा के साथ में। और एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी हमारा कार्यक्रम के माध्यम से चल रहा था साथियों, मार गई मुझे तेरी जुदाई। इसी दोस्तों गीत के बाद फिर से मैं अनुमति चाहूंगी हमारी अगली फरमाइश की ओर बढ़ने की। साथियों अगली फरमाइश हमारे बीच करेली बरेली से आई है। श्रोता साथी जुड़ रहे हैं मोहम्मद आमिर अंसारी, नजीन अंसारी, शमा अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर अंसारी। इन श्रोता साथियों की फरमाइश है तेरे नाम फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत ओढ़नी ओढ़ के नाचूं। इस गीत को आवाज दी है दोस्तों उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी ने। और हमारे दोस्त जो इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी से है दिल्ली से तुलसा मस्किन, तुलसी मस्किन, मीना मस्किन, आशीष अरोड़ा, चेतन मस्किन, मेघा मस्किन चंडीगढ़ से रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना जी। इसी बीच दोस्त जुड़ रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूंगी, श्रीरामपुर से अशोक कुमार, अविका जीविका, सानू कुम्हार, अर्चना कुम्हार और गणेश अविका जी। इसी बीच पुनावाले से है अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा मंगलकर जी, सायसा सोनवने जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल है ओढ़नी ओढ़ के नाचू। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, इसी गीत के बाद मैं फिर से जुड़ना चाहूंगी अगली फरमाइश की ओर बढ़ना चाहूंगी। साथियों, अगली फरमाइश हमारे बीच हिंगोली महाराष्ट्र से आई है। फिल्म का नाम है गुप्त, गीत के बोल हैं दुनिया हसीनों का मेला। इस गीत को आवाज दी सुनीता राव और उदित नारायण जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं शाजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के उत्तम जामदाड़े जी। इसी बीच साथी जुड़ रहे हैं और भी, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, इश्के दले, जीविका दले, सनिका दले, पुना वाले पुड़े से अजय सोनवानी, करिश्मा अविका, शायसा सोनने, विशाखा मंगलकर जी, एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकिन कांगड़ा, मस्तानपुरा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं दुनिया हसीनों का मेला।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, साथियों बताना चाहूंगी। ये फरमाइश हमारे बीच आई है मॉडल टाउन करनाल से। फिल्म का नाम है दोस्तों मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। गीत के बोल हैं चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। जुड़ रहे हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधन उतन, संधि गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इश्पी शर्मा जी और भी साथी हमारे बीच जुड़ रहे हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को। महाराष्ट्र से हैं रुपेश सिंगे, महेश प्रिगेश, प्रीतेश संगे, पूरा संगे परिवार। दुल्हपुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोहिनी, मोहितिक, बलवीर सिंह जी। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चुरा के दिल मेरा गोरियां चली।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है, लदावली जिला मुरादाबाद से आया है। आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, ये फरमाइश हमारे बीच आई है मुरादाबाद से, और फरमाइश करता है अजित कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना जी। इन श्रोताओं की फरमाइश है, बोल रहा था बोल फिल्म का गीत, बोल रहा था बोल तूने ये क्या किया। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में, जो सुनना चाहते हैं इसी गीत को। आपको बताना चाहूंगी और भी दोस्त हैं, अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, रोहन, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका जी और गुरकीरत गुरशब्द सिंह राहुल जी। गंजुडवाड़ा से जुड़ रहे हैं मोहम्मद यासिन हाशमी, बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी, कलीम अंसारी जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में, हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं प्रेम सिंह वडवाल, सुखवीर, काजल वडवाल, लखवीर वडवाल, रानो कृष्णा, श्रीमती छिंदू, प्रवीण शीतल, नवीन अंगीला, निशानंद मूल, प्यारा बेटा, चटकू मटकू, महावीर, गीता मलकर, सुखचैन सिंह बूटा। डाबकी रोड अकोला से हैं सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गुरु मंदुरकर, आरव अर्पिता जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल है, बोल रहा था बोल तूने ये क्या किया।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी, मॉडल टाउन करनाल से सुधर नूतन, संधि गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, ईश्वर शर्मा जी। इन श्रोताओं की फरमाइश है, सुनाया जाए मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का गीत, पास वो आने लगे जरा जरा। फरमाइश करता और भी हैं जो इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया, छत्तीसगढ़ से हैं ये। सफर आबाद से जुड़ना चाह रहे हैं, सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सान्विक सरवत देशमुख, कल्पना देशमुख जी। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा। संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, शोशी राजेश, शीतल राजेश, राशि राजेश जी। तो आइए साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं पास वो आने लगे जरा जरा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दुल्हपुर उत्तर प्रदेश से। श्रोता साथियों, फिल्म का नाम है गैम्बलर, गीत के बोल हैं हम उनसे मोहब्बत करके। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इरकास, नरगिस खातून जी और श्रोता साथी हैं जो सुनना चाह रहे हैं। सरदना मेरठ से नील जैन, सैम जैन, मस्कार, मुस्कान जैन, जैन साहब और जीवायम जैन। जरूर वरूर महाराष्ट्र से बाबा साहेब बड़ोदी, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे जी। जुड़ना चाह रहे फजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विश्व खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टीवानशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक जी और समस्त खेड़ा परिवार सदस्यगण जुड़ रहे हैं। नवाशहर पंजाब से हैं गगनदीप थारती, तीना कुमारी थांडी, प्रियंक थांडी, प्रशांत वामिका बेबी और वाणी प्रियम थांडी जी। धनोरा विटाली से हैं नादुरा बुलढाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल, प्रेम श्रेया श्रुति जी। देशमुख से जुड़ना चाह रहे राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंद्राबाई खोबरखेड़े, छकलुताई खोबरखेड़े, दीपाली रामधड़े, स्वराज रामधड़े, तनुज पवन भोंडे जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं हम उनसे मोहब्बत करके।

0: दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था और इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगले फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है बिहार कॉलोनी दिल्ली से। फिल्म का नाम है, आपको बताना चाहूँगी, देवदास। गीत के बोल हैं साथियों, सिलसिला ये चाहत का। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतन मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना जी, कासगंज से श्रोता साथी और भी हैं जो जुड़ रहे हैं, जाहिद अली सैफी, आबाद खान, मोहम्मद जोहान सैफी और लिब्बा मलिक जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहूँगी, जिला नालंदा से हैं महेश कुमार जी और लीसा जी, और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहूँगी। दोस्तों, किशोर नगर अमरावती से हैं हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे, सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना ताई गुणाने, मस्तानपुरना जंक्शन से अनंता भगत, अनुना चेतन, सुलोचना भगत, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी, और भी हमारे साथी हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं, आपको बताना चाहूँगी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से दोस्त जुड़ रहे हैं, चल्लूलाल श्रीवास, छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हैं उमा सिंह, माहेश्वरी देवी जी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि बन्नी, आरुष शौर्य, दिनेश जी, और भी श्रोता साथी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार, लोकेश कुमार जोशी, विदही जोशी, हंसिका जोशी, अंकिता जोशी, विदही जोशी। मध्य प्रदेश से जयवंती केवट जी, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डावर जी, और भी हमारे दोस्त इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से, दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर और समस्त रामेकर परिवार सदस्यगण। इसी बीच हमारे और भी दोस्त अमरावती महाराष्ट्र से हैं हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय, रुद्रा रामेकर, और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं गंजुडवारा से शमशिल कमर राय, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनुंसारी, कलमंसारी जी। इसी बीच और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं पटेल नगर मोलत से रमेश कुमार जजोरिया, गीतनी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया जी। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं एड नाशिद शेख, नाजिर नाशिद, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा से अमित मुजावर, सविया मुजावर, मिखाइल मुजावर जी। राजस्थान से जुड़ना चाह रहे हैं जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी, और भी हमारे दोस्त जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ में। नाम बताना चाहूँगी दोस्तों आपको जुड़ रहे हैं, सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हियांश कुमार चंदन, और भी साथ ही इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं सिलसिला ये चाहत का। आपको बताना चाहूँगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए साथियों आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।
1: देवदास आ रहा है। शुति, शुति। देवदास आ रहा है। तुझे क्या क्या बताओ, क्या क्या तैयारियां चल रही है वहां पर। दीदी तो जैसे पागल हो गई है और सारी हवेली तो खुशी से झूम उठी है। और
2: अरे ये क्या पगली, तू रो रही है? कहीं ये खुशी के आंसू देव के आने से पहले इस दिए को बुझाना दे।
3: नहीं माँ, दुनिया की कोई भी शक्ति इस दिए को नहीं बुझा सकती।
4: उड़ी बाबा, जरा हम भी तो देखे कितनी शक्ति है इस दिए में।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234।

तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन वागर रेडियो 90.8 FM, जहां हर लम्हा है खास और हर कार्यक्रम में है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। संध्याकालीन सभा में आप सभी का स्वागत करती हूं और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनेंगे कार्यक्रम आराधना। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 5 बजे भक्ति और श्रद्धा के साथ में। 5:30 पर शुरू होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज। युवाओं की आवाज कार्यक्रम में जहां युवा सोच, जोश और बदलाव की बातें होंगी सिर्फ आपके लिए, और इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट, यानी के मैं और महक सोनी। शाम 6 बजे आप सुनिए सच्चा बचपन, मासूमियत कहानी और सीख से भरी प्यारी सी घड़ी। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर और अंजलि पाराशर। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे आजादी के सही मायने और जिम्मेदारियों की बातें। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारी बहनों की कहानियाँ, उनकी प्रेरणा के बारे में जान पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्रोता साथियों, आप सुनेंगे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जहां हम बात करेंगे उन सपनों की जो आंखों में बसते हैं, दिल में धड़कते हैं और जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। अगली कड़ी में कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत, जहां होगा बॉलीवुड के बेहतरीन गानों का तड़का और मस्ती का धमाका। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है नई पुरानी गजलें। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 9 बजे से 10 बजे के बीच में। तो साथियों, ये थी हमारी संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई बड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, यह आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए।

भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
2: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
1: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है। जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
2: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
1: ये हुई ना बात गोरी।
3: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आंगनवाड़ी जाईने तारो नाम लगाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ। सोराना न कब्जू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार। भिंडा तुरिये आलड़ी, कोराने वालोर, रोपो खाओ सब्जिये, डीले आवे जोर। सीरो दलियो राबड़ी, फूली सोका दाल, पांसे महीने बाल ने आ खवानू आल। अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।
2: जागृति बोन, आपने कारे सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
3: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
2: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बोन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
2: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
2: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े सामने। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहेगी सद्भावनाओं के विचारों से हमारी ही चेतना शुद्ध होती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि कशिश, मनुष्य का जीवन केवल शरीर से नहीं चलता बल्कि उसके विचारों, भावनाओं और संस्कारों से संचालित होता है।
0: जी,
1: जिस प्रकार स्वच्छ जल शरीर को स्वस्थ रखता है उसी प्रकार अच्छे और सकारात्मक विचार मन को निर्मल बनाते हैं। आज के समय में जब समाज में तनाव, ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ बढ़ता जा रहा है तब सद्भावना का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, सद्भावना केवल दूसरों के प्रति अच्छा सोचने का नाम नहीं है बल्कि अपने भीतर प्रेम, करुणा, दया और सहनशीलता को विकसित करने की प्रक्रिया भी है।
0: जी जी,
1: जब मनुष्य के मन में सद्भावना के विचार आते हैं तब उसकी चेतना शुद्ध होने लगती है और उसका व्यक्तित्व उज्ज्वल बन जाता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा जागृति जी। तो आज के इस कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हमारी इस विषय को लेकर ढेर सारी चर्चा रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि हम दोस्तों को पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं तो क्यों ना आज भी शुरुआत पहले गीत के साथ कर ले।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो केवल समाज को ही नहीं बल्कि हमारे भीतर के संसार को भी बदलने की शक्ति रखता है। विषय है सद्भावना के विचारों से हमारी चेतना शुद्ध होती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं जागृति जी कि आज का समय तेज गति, तनाव और डिजिटल शोर का समय है। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, पहचान बनाना चाहता है, लेकिन साथियों इस दौड़ में कहीं न कहीं मनुष्य को अपने भीतर की शांति, अपने भीतर का अपनापन और संवेदनशीलता खोनी पड़ रही है। लोग बाहरी चमक में उलझते जा रहे हैं लेकिन भीतर का मन अशांत हो रहा है, ये कोई नहीं देख रहा। ऐसे समय में जागृति जी सद्भावना केवल एक नैतिक शिक्षा नहीं है बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का आधार भी है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि सद्भावना का मतलब होता है दूसरों के प्रति शुभ भावना रखना, किसी के लिए बुरा न सोचना, न किसी का बुरा करना, साथ ही सहायता और प्रेम का भाव रखना। हम कह सकते हैं कि जब हमारे विचार सकारात्मक और शुभ होते हैं साथियों, तब वे केवल सामने वाले को ही नहीं प्रभावित करते बल्कि हमारी अंदर की चेतना को भी निर्मल और शांत बनाते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि सबके प्रति शुभ भावना रखना, किसी के प्रति द्वेष, घृणा या बुराई न सोचकर प्रेम और सम्मान का भाव रखना ही सद्भावना कहलाता है।
0: बिल्कुल,
1: ये मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। जिस व्यक्ति के विचार सकारात्मक होते हैं श्रोताओं, उसका व्यवहार भी मधुर होता है। ऐसे लोग समाज में सम्मान पाते हैं और हर व्यक्ति उनसे जुड़ना चाहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसके विपरीत जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए गलत सोचता है उसके मन में अशांति बनी रहती है, उसका चेहरा भी चिंता और क्रोध से भरा दिखाई देता है।
0: बिल्कुल,
1: कहा गया है कि जैसे विचार होंगे वैसे हमारे संस्कार भी बनते जाते हैं। मनुष्य की चेतना उसके विचारों से निर्मित होती है श्रोताओं। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध और नफरत हो तो चेतना दूषित हो जाती है
0: जी।
1: ऐसे व्यक्ति को हर जगह बुराई दिखाई देती है, लेकिन जब मन में प्रेम, सहयोग और सद्भावना का भाव होता है तब चेतना शुद्ध और शांत रहती है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को मानसिक शांति देती है और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखती है, साथ ही दूसरों की सहायता करने के लिए भी तत्पर रहती है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा जागृति जी। इसी के साथ एक कहावत हम सभी ने सुनी है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि दोस्तों हमारे मन में ईर्ष्या, क्रोध, नफरत और स्वार्थ भरे हैं तो जीवन में तनाव और अशांति बढ़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वही यदि मन में दया, प्रेम, करुणा और सद्भावना है तो जीवन में संतुलन, संतोष और मानसिक शांति अपने आप ही आएगी। ऐसे में हमारे युवाओं के लिए यह विषय काफी महत्वपूर्ण है जागृति जी, क्योंकि आज की पीढ़ी समाज का भविष्य है। यदि युवा अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लेकर जाएंगे तो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों का भविष्य उज्जवल होगा।
1: बिल्कुल,
0: हम कह सकते हैं कि इसमें चेतना की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि चेतना मनुष्य की आंतरिक जागरूकता है। साथियों यह वह शक्ति है जो हमें सही और गलत का बोध कराती है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और साथ ही हमारे व्यवहार, ये सभी हमारी चेतना से ही प्रभावित होते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि मनुष्य की चेतना उसके विचारों से निर्मित होती है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था। आज हम देखते हैं कि आज का युग प्रतियोगिता का युग है, जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हम यही बताते हैं हमारे युवा साथियों को कि श्रोता साथियों आज का युग प्रतियोगिता का युग है। लोग आगे बढ़ने की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे दूसरों की भावनाओं को समझना ही भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: छोटी छोटी बातों पर विवाद करते हैं, कटुता रखते हैं, रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है और इसका सबसे बड़ा कारण श्रोता साथियों नकारात्मक सोच होती है। यदि मनुष्य अपने भीतर सद्भावनाओं के विचार को स्थान दे तो वह दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उनसे प्रेरणा लेना सीखेगा।
0: बिल्कुल,
1: इससे समाज में प्रेम और सहयोग का वातावरण भी बनता है। कशिश, कहा गया है कि द्वेष मिटेगा तो ही प्रेम बढ़ेगा और तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोता सद्भावना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो सबसे पहले उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। हमारे भीतर शांति आती है, संतोष आता है और आनंद का अनुभव होता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कशिश की सकारात्मक सोच रखने वाले लोग अधिक स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके भीतर तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है।
0: बिल्कुल,
1: इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सद्भावना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि हमारी युवा साथियों से बातचीत चल ही रही है कि सद्भावनाओं के विचार हमारी चेतना को कैसे शुद्ध करते हैं, तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,

0: इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातचीत का विषय था कि सद्भावनाओं के विचारों से हमारी चेतना ही शुद्ध होती है, इसको लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे।
1: बिल्कुल,
0: बातें बहुत सारी हो चुकी थी, बीच में गीत संगीत होते हैं तो हमारे युवा साथियों का भी मनोरंजन हो जाता है। कशिश
1: जी बिल्कुल,
0: तो फिर से हम रूबरू होते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमारे श्रोता साथियों को हम बताते हैं कि साथियों, जैसा कि परिवार में सद्भावना का विशेष महत्व होता है, जिस घर में प्रेम और सम्मान सहयोग का वातावरण होता है, और शांति बनी रहती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं। इसके विपरीत जहाँ कठोरता होती है, स्वार्थ होता है, वहाँ हमेशा तनाव और अशांति बनी रहती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए परिवार की खुशहाली के लिए सद्भावना बहुत जरूरी है। श्रोताओं, विद्यालय और समाज में भी सद्भावना का महत्व होता है। यदि एक विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करे, जाति धर्म का भेदभाव न करे, सहयोग की भावना रखे, तो विद्यालय का वातावरण भी सकारात्मक बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी प्रकार समाज में यदि लोग एक दूसरे का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, तो समाज मजबूत और विकसित बन सकता है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात करें तो हम देखते हैं कि मनुष्य के विचार ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यदि साथियों विचार सकारात्मक होंगे तो जीवन में उत्साह और ऊर्जा बनी रहेंगे, और यदि विचार नकारात्मक है तो व्यक्ति हर परिस्थिति में सुख दुख और असफलता ही देखेगा जागृति से।
0: बिल्कुल,
1: कई बार साथियों हम ये सोचते हैं कि केवल हमारे कर्म ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तव में कर्मों की शुरुआत विचारों से होती है। जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका व्यवहार होगा, और जैसा आपका व्यवहार होगा साथियों वैसा आपका जीवन बनेगा।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो यदि किसी युवक के मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या है तो वह कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वही युवक दूसरों के सफलता से प्रेरणा लेता है और उनके लिए शुभ सोचता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ेगी साथियों।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए कहा जाता है कि अच्छे विचार केवल दूसरों का नहीं बल्कि स्वयं का भी कल्याण करते हैं।
0: जी हाँ कशिश, और इसी के साथ हमें समझना होगा कि संसार में हर व्यक्ति अलग है, सबकी सोच अलग है, परिस्थितियाँ अलग है और जीवन अलग अलग है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए किसी के प्रति घृणा रखने के बजाय श्रोताओं हमें सहनशीलता और समझदारी का परिचय देना होगा। सद्भावना हमें यही सिखाती है कशिश कि हम सबको साथ लेकर चले और मानवता को सबसे ऊपर रखें।
1: बिल्कुल,
0: कहा गया है साथियों कि सबको साथ लेकर चलना हमें सीखना होगा, तभी मानवता का दीप जला सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: हम कह सकते हैं कि सद्भावना केवल एक विचार नहीं है जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, बल्कि जीवन को सुंदर बनाने वाली शक्ति है।
1: बिल्कुल,
0: यह हमारे मन को शुद्ध करती है, चेतना को उज्जवल बनाती है और समाज में प्रेम तथा शांति का वातावरण तैयार करती है। यदि हर व्यक्ति अपने मन में सद्भावनाओं के विचार को स्थान दे कशिश, तो न केवल उसका जीवन सुखमय बनेगा बल्कि पूरा समाज भी खुशहाल और शांतिपूर्ण बन जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: हमें हमेशा ये प्रयास करने होंगे श्रोताओं कि हमारे विचार सकारात्मक हो, हमारी वाणी मधुर हो और हमारा व्यवहार मानवता से भरा हो। यही सच्चे जीवन का मार्ग है। सद्भावना का जो दीप जलाता है वही अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सजाता है। मन की शुद्धि ही सबसे बड़ी पूजा है श्रोताओं, और प्रेम से भरी चेतना ही मानवता की सच्ची पूजा है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि सद्भावना रखने वाला व्यक्ति के अंदर जो है वो भीतर से मजबूत होता है। उसे किसी से तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं होती। वो दूसरों को गिराता नहीं है बल्कि स्वयं को बेहतर बनाकर आगे बढ़ना चाहता है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, ऐसे लोगों में आत्मविश्वास ज्यादा देखा जाता है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि सद्भावना रखने वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है। उसे केवल अपने लाभ की चिंता नहीं होती, वो दूसरों के बारे में पहले सोचता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि परिवार प्रेम और विश्वास का आधार सद्भावना होती है। लेकिन यदि परिवार के सदस्यों में कटुता स्वार्थ और अहंकार बढ़ जाए तो घर का वातावरण अशांत इससे हो जाएगा। इसलिए हम देख सकते हैं कि सद्भावना परिवार को जोड़ कर रखती है। माता पिता और बच्चों के प्रति स्नेह रहता है, बच्चों का बड़ों के प्रति सम्मान रहता है, भाई बहनों का सहयोग रहता है और कठिन समय में एक दूसरे का साथ भी हमें मिलता है साथियों।
0: बिल्कुल,
1: कहा जाता है कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ परिवार केवल एक घर नहीं बल्कि भावनाओं का सुरक्षित स्थान बन जाता है।
0: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: तो विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवन, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगाव, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ल ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन नो स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
2: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं जो हर घर हर गली हर बच्चे से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे स्वच्छता और बचपन को लेकर।
2: बिल्कुल
1: कशिश, हम देखते हैं कि बचपन जीवन का सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण दौर होता है। इसी समय बच्चे सीखते हैं कैसे रहना है, क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है। श्रोता साथियों, अगर इस उम्र में स्वच्छता की आदत डाल दी जाए तो यह जीवन भर साथ रहती है। हम देखते हैं कशिश के बचपन को कच्ची मिट्टी की तरह कहा जाता है।
2: जी जी,
1: जैसा ढालेंगे वैसा बन जाएगा। स्वच्छता केवल श्रोता साथियों सफाई नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। साफ हाथ, कम बीमारियां, साफ घर, स्वस्थ परिवार, साफ वातावरण, खुशहाल बचपन। अगर बच्चा शुरू से ही साफ सफाई की आदत सीखता है तो वह न केवल खुद स्वस्थ रहता है बल्कि समाज को भी स्वस्थ बनाए रखने में योगदान देता है।
2: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी हाँ,
2: तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ गीत सुनवाएं हम।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही

0: तो इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि साथियों गीत से पहले विषय बता ही चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम बात करने वाले हैं स्वच्छता और बचपन पर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम कह सकते हैं कि स्वच्छता का अर्थ होता है साफ सफाई रखना। यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है साथियों, खासकर बचपन में स्वच्छता की आदत डालना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बचपन वह समय होता है कशिश जब बच्चे सीखते हैं वही आदत उनके पूरे जीवन में बनी रहती है। अगर बच्चों को शुरुआत से ही स्वच्छता की शिक्षा दी जाए साथियों, तो वे स्वच्छ और खुश जीवन जी सकते हैं।
1: बिल्कुल रीना, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि बचपन जीवन की सबसे सुंदर, सबसे कोमल और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है।
2: बिल्कुल,
1: जैसा कि आपने बताया कि इसी समय बच्चों में अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें विकसित की जाती है।
0: जी
1: अंजलि जी, स्वच्छता जो है जिसको लेकर आज हम बात कर रहे हैं, वो केवल शरीर या कपड़ों की सफाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए।
2: बिल्कुल,
1: यह हमारे घर, विद्यालय, आसपास की वातावरण, विचारों और व्यवहार की भी सफाई है साथियों। क्योंकि स्वच्छता एक आदत होती है, एक संस्कार होते हैं जो बचपन से ही बच्चों को भी सिखाए जाने चाहिए।
2: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि आज के समय में जब बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, तब पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है।
2: बिल्कुल,
1: और बच्चे मोबाइल और डिजिटल दुनिया में अधिक समय बिताने लगे हैं।
2: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा, हम देखते हैं कि स्वच्छता हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बीमारियों से बचाव अगर हम बच्चों का नहीं करेंगे तो बच्चों में डायरिया, त्वचा रोग, सर्दी जुकाम हो जाएगा।
1: बिल्कुल,
2: हाथ धोने की आदत से लगभग हम कह सकते हैं कि 50% तक बीमारियां रोकी जा सकती है। साफ सुथरा वातावरण बच्चों के दिमाग को शांत और एकाग्र बनाता है।
1: जी
2: श्रोता साथियों, जो बच्चा साफ सुथरा रहता है वह दूसरों के बीच आत्मविश्वास से भरा होता है।
1: बिल्कुल,
2: हम कह सकते हैं बच्चों को स्वच्छता की आदत सिखाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
2: बच्चे वही सीखते हैं जो वह घर में देखते हैं। अगर कशिश और रीना माता पिता खुद साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बच्चे भी नहीं सीख पाएंगे। और बच्चों को छोटे छोटे काम अगर हम देते हैं कि जैसे कि खिलौने समटना, हाथ धोना और डांट की बजाय अगर हम उन्हें प्यार से इन सारी चीजों को समझाते हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चे जो है इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सीख पाते हैं।
1: बिल्कुल
2: श्रोता साथियों, खाना खाने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है, यह बात हम उन्हें कहानी और खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं, ताकि ये जो महत्वपूर्ण स्वच्छता का गुण है वो हमारे बच्चों के अंदर आ सके।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। अगर ये हम बात करें कि बचपन में स्वच्छता के महत्व पर, तो हम कह सकते हैं कि बचपन जीवन की नींव होता है। इस समय बच्चों का शरीर और मन तेजी से विकसित होता है कशिश।
1: बिल्कुल,
0: यदि बच्चे साफ सफाई का ध्यान रखते हैं साथियों, तो वे कम बीमार पड़ते हैं। गंदगी से कई तरह की बीमारियां फैलती है, जैसे कि सर्दी, खांसी, पेट दर्द, बुखार। इसलिए बच्चों को रोज नहाना, हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना और अपने आसपास साफ सफाई रखना जरूर सिखाना चाहिए।
2: बिल्कुल,
0: स्वच्छता केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और विचार की भी होनी चाहिए। बच्चों को अच्छे विचार अपनाने और बुरी आदतों से दूर रहने की भी हमें शिक्षा देनी चाहिए।
2: बिल्कुल आपने सही कहा, इसी साथ कशिश कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को ये बताना चाहेंगे कि स्कूल केवल पढ़ाई का स्थान नहीं है, बल्कि संस्कारों का केंद्र भी।

हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है और स्वच्छता और हमारे बचपन को लेकर हम बातचीत कर ही रहे हैं साथियों जी, तो ये बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी आपको सुनवाना चाहेंगे यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हीना और कशिश हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि स्वच्छता और बचपन का रिश्ता केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ, सुरक्षित और जिम्मेदार भविष्य की नींव है। जिस बच्चे का बचपन स्वच्छ वातावरण में बीतता है, उसका शरीर ही नहीं बल्कि सोच, आदतें और व्यवहार भी सकारात्मक बनते हैं।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि गंदगी केवल बीमारियां नहीं फैलाती, बल्कि धीरे धीरे बच्चों की ऊर्जा, आत्मविश्वास और सीखने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। इसलिए स्वच्छता को केवल नियम या मजबूरी मानकर नहीं, बल्कि जीवन का जरूरी हिस्सा मानकर हम

0: जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं
1: जी,
0: सफाई प्रतियोगिता कराई जा सकती है, साथ ही हाथ धोने की जो सही विधि होती है वो भी देना श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि स्कूल में बच्चों को बताया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और पर्यावरण दिवस भी मनाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रयास होते हैं साथियों, जिससे बच्चों को स्वच्छता के प्रति अवगत करवाया जाता है।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि यह भी समझना जरूरी है कि स्वच्छता केवल घर के अंदर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।
0: जी,
1: अगर घर साफ हो लेकिन बाहर की गली, स्कूल, मैदान और पानी के स्रोत गंदे हो तो बच्चों का स्वास्थ्य फिर भी खतरे में रहेगा। इसलिए पूरे समाज को मिलकर बच्चों के लिए स्वच्छ वातावरण तैयार करना होगा, गाँव हो या शहर।

0: कि हम अपने बच्चों को केवल बड़ा नहीं करेंगे बल्कि उन्हें स्वस्थ, जिम्मेदार और स्वच्छ सोच वाला इंसान बनाएंगे। कि जब बचपन स्वच्छ होता है तभी भविष्य भी उज्जवल होता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। अगर ये हम जाने कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के संबंध के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है। अगर हम साफ सफाई रखते हैं तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। साथियों, साफ वातावरण में रहने से कशिश शरीर मजबूत रहता है और मन में खुशी रहती है। वही गंदगी से कीटाणु फैलते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। बच्चों के लिए तो यह और भी ज्यादा जरूरी है साथियों, क्योंकि उनका शरीर कोमल होता है और वे जल्दी संक्रमण का शिकार हो सकते हैं।
2: बिल्कुल, आपने सही कहा। तो दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे कि स्वच्छता केवल एक आदत नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी और एक संस्कार भी है।
1: बिल्कुल,
2: यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का बचपन स्वस्थ, खुशहाल और सुरक्षित बने, तो हमें आज से ही उन्हें साफ सफाई का महत्व समझाना होगा।
1: बिल्कुल,
2: साथियों याद रखिए कि एक स्वच्छ बच्चा ही स्वस्थ समाज और उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। घर की छोटी छोटी आदतें जैसे कि हाथ धोना, कूड़ा डस्टबिन में डालना, साफ वातावरण रखना, ये सभी चीजें बच्चों के जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है।
1: बिल्कुल,
2: याद रखिए दोस्तों, हम स्वयं स्वच्छ रहेंगे और दूसरों को भी स्वच्छ रखेंगे, अपने आसपास सफाई रखेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी स्वच्छता का सही महत्व सिखाएंगे, क्योंकि स्वस्थ बचपन ही स्वस्थ और सुंदर भारत का सपना साकार कर सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं, और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
2: बिल्कुल,
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
2: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा, कैंपस बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है साथियों 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल को
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर को। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जागृति बोल, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा की नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचावो, पानी बचावो, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा अमर हित्ता किसान भाई बोनों ने आपनी बोन मनीषा ने आपनी बोन अंजलि नु
1: राम राम।
0: होवे भाई बोनो आप सब हमले रिया हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत करे हो हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में।
2: होवे भाई बोनो लीने हाजिर थी गए हो कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लीने एक नया विषय ने हाथे। भाई बोनो आज कार्यक्रम में हमारी अब तक की बातचीत का विषय है कि जलवायु परिवर्तन नो आज से 10 साल ही रो है, इनने स्थानीय ज्ञान सामुदायिक प्रयास ने अनुकूल खेती ने आड़ी आपने हरते वतवो होगा।
0: होवे
2: आपने देखी रहो हो मनीषा बोन की आज ये बदलतु मौसम है ये आपड़ा बल्ले नवी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन नो जे असर है ये आपड़े खेती माते वधारे देखवा में आपड़ा ने मिली रू है। आपड़े देखो हो कि आपड़ी जे खेती है ये मौसम ने ऊपर अस निर्भर रहे है, पण अवड़ीना टाइम में आपड़े देखी रहो हो अचानक तेज गर्मी कारेक बरसात पड़ी जान कारे बरसात नहीं पड़े ये लंबा टाइम उदी घना एव क्षेत्र रहे हैं ये हुकु पड़ी जा। आज ये बदलाव है ये केवल मौसम नी अनियमितता नथी बल्कि आपणे देखी रह्यो कि जलवायु परिवर्तन नु संकेत है।
0: होवे
2: आपणे कही शको कि जे खेती है ई संकेत है जे आपणे खेती ने आपणी जे आजीविका है बेने प्रभावित करे है।
0: होवे
2: तो आज आपणे कार्यक्रम में ई जाणूंगा कि हरते आपणे स्थानीय ज्ञान सामुदायिक प्रयास ने अनुकूल खेती करी ने अणा जलवायु परिवर्तन तकी बची शक।
0: होवे अंजलि बोन तो अणा विषय माते आपणे भाई बोनो कते घणा अकाने वाते रेंगा अबर हमड़ा गीत ने मोरे कर आपणी वाते।
2: होवे तो भाई बोनो आप हमबरते रहेजो आपणो रेडियो आपणी वाते वाग रेडियो 90.8 FM माते।

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपने साथ ही जागृति भट्ट
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओ, हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को लेकर एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है, छोटी बेईमानी बड़े नुकसान कैसे करती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि हम देखते हैं अंजलि की बेईमानी चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका परिणाम हमेशा दुखद होता है। मनुष्य का जीवन विश्वास, ईमानदारी और सच्चाई पर टिका होता है।
1: बिल्कुल,
0: जब कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों में बेईमानी करना शुरू करता है तो वही आदत धीरे धीरे उसके चरित्र का हिस्सा बन जाती है। शुरुआत में श्रोता साथी मामूली गलती लगती है, लेकिन समय के साथ ये बड़े नुकसान का कारण बनती है।
1: जी हाँ,
0: समाज में कई समस्याएं केवल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोग छोटी बेईमानियों को सामान्य समझने लगे हैं। कोई दुकानदार थोड़ा कम तोल देता है, कोई विद्यार्थी नकल कर लेता है, कोई कर्मचारी समय की चोरी करता है, तो कोई झूठ बोलकर अपना फायदा उठा लेता है। अंजलि, छोटी छोटी बातें देखने में बहुत मामूली लगती है हमको, परंतु इसके जो परिणाम होते हैं बहुत गंभीर होते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें होने वाली हैं कि किस तरीके से कभी कभी हम जानकर और अनजाने में छोटी छोटी बेईमानियां कर देते हैं, वो किस तरीके से नुकसानदेह हमारे लिए हो सकती है। बातें ढेर सारी कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवाना चाहेंगे।
0: जी हाँ, तो आइए साथी सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में, आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी

0: फिल्म सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था और हमारी बातचीत भी रही थी कि आज हमारा बातचीत करने का विषय है छोटी बेईमानी बड़े नुकसान कैसे करती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि अंजलि कहा गया है कि छोटी बेईमानी की आदत जीवन में हमारी बहुत बड़ी आफत बन जाती है। छोटी बेईमानी वो होती है जिसमें व्यक्ति ये सोचकर गलत काम करता है कि इससे किसी को अधिक नुकसान नहीं होगा। जैसे बस का टिकट न लेना, स्कूल में होमवर्क के बारे में झूठ बोलना, दुकान में गलत पैसे वापस मिलने पर चुप रह जाना या किसी का सामान बिना पूछे इस्तेमाल करना। लोग अक्सर इन बातों को मजाक या चतुराई समझ लेते हैं, लेकिन श्रोताओं यही छोटी आदतें धीरे धीरे मनुष्य के संस्कारों को कमजोर करती है।
1: बिल्कुल,
0: जब व्यक्ति बार बार छोटे झूठ और छोटी धोखाधड़ी करता है तो उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है, फिर वो बड़े गलत काम करने में भी संकोच नहीं करता।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि एक छोटी सी दरार अगर समय पर न भरी जाए तो पूरी दीवार गिरा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: उसी तरह श्रोता साथियों छोटी बेईमानी भी धीरे धीरे परिवार, समाज और देश की नींव को कमजोर कर देती है। ईमानदारी सिर्फ पैसों से जुड़ी नहीं होती है बल्कि ये इंसान के चरित्र, भरोसे और जिम्मेदारी से भी जुड़ी होती है।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में जागृति जी लोग अक्सर कहते हैं कि सब ऐसा ही करते हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है। श्रोता साथियों इतनी सी बात से क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें हम अक्सर कहते रहते हैं, लेकिन यही सोच आगे चलकर बड़ी समस्याओं को जन्म देती है। सामुदायिक जीवन में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होता है और छोटी बेईमानी इसे विश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जैसा कि जागृति जी आपने बताया कि बेईमानी वो होती है जहाँ बहुत सी बार झूठ बोलने पर लोगों को फायदा हो जाता है, लोग काम चोरी करने लगते हैं। हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी काम शुरुआत में हमें छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें हमारी आदत बन जाती है।
0: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि जैसा कि अभी आपने कहा था कि ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा धन है, छोटी बेईमानी सबसे पहले व्यक्ति के चरित्र को कमजोर करती है।
1: बिल्कुल,
0: जब इंसान छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है तो उसकी सच्चाई पर लोगों का भरोसा कम होने लगता है। श्रोताओं एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा पाना बहुत कठिन होता है, परिवार, मित्र और समाज ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं, धीरे धीरे वो अकेला पड़ जाता है। आज हम देखते हैं कि कई लोग ये सोचते हैं कि सब करते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, जैसा कि अभी आपने कहा था।
1: बिल्कुल,
0: और यही सोच समाज में नैतिकता को खत्म कर रही है। श्रोताओं आज हम देखते हैं कि विद्यालय बच्चों के चरित्र निर्माण का स्थान होता है। यदि विद्यार्थी छोटी उम्र में ही नकल करना, झूठ बोलना या दूसरों का काम अपना बताना सीख जाए तो आगे चलकर यही आदत उसके भविष्य को भी नुकसान पहुंचाती है।
1: बिल्कुल,
0: यही अगर व्यापार की बात करें अंजलि तो व्यापार विश्वास पर चलता है। यदि दुकानदार थोड़ा कम तोल दे, नकली सामान बेच दे या ग्राहक से झूठ बोले तो शुरुआत में उसे थोड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन समय के साथ उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। जब ग्राहक का भरोसा टूटता है तो व्यापारी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: कई बड़े व्यापार केवल इसीलिए बंद हो जाते

0: हमेशा सुख और सम्मान देता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि समाज भरोसे पर चलता है। जब लोग एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देते हैं तो रिश्ते कमजोर होने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि अगर मरीज डॉक्टर पर भरोसा न करे, किसान व्यापारी पर भरोसा

0: वादे पूरे न करना। श्रोता साथियों, कहना चाहूंगी कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। अगर माता पिता छोटी बेईमानी को सामान्य मानते हैं तो बच्चे भी उसी राह पर चल पड़ते हैं।
1: बिल्कुल,
0: धीरे धीरे परिवार में विश्वास खत्म होने लगता है और रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: ये सब मिलकर देश को करोड़ों का नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हर व्यक्ति यह सोचकर छोटी चोरी करे कि मेरे अकेले से क्या होगा, तो पूरे देश की व्यवस्था कमजोर हो जाएगी।
1: बिल्कुल
0: कहना चाहेंगे कि

0: और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, आज के युवा देश का भविष्य है। यदि युवा छोटी बेईमानी से बचना सीख जाए अंजलि, तो वे अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: सफलता का असली अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं है श्रोताओं, बल्कि सम्मान और विश्वास अर्जित करना है। श्रोताओं, आपको चाहिए कि हम हर परिस्थिति में सच्चाई का साथ दें, चाहे परीक्षा हो, नौकरी हो या व्यापार। ईमानदारी हमेशा सबसे मजबूत आधार होती है।
1: बिल्कुल,
0: जो व्यक्ति

0: गांव वालों से माफी मांगी और फिर से ईमानदारी से काम करना शुरू किया।
1: बिल्कुल,
0: धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस लौटा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटी बेईमानी तुरंत फायदा दे सकती है, लेकिन अंत में बहुत बड़ा नुकसान भी करवाती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कहा गया है कि क्षणिक लाभ के लालच में हमें अपने जीवन का जो मान है उसे नहीं खोना चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, शुरुआत में इंसान डरता है, लेकिन जब उसे कोई रोकता नहीं है तो वह गलती आदत बन जाती है।
0: बिल्कुल,
1: धीरे धीरे

0: खूबसूरत रखता है समाज में अच्छा उदाहरण बनता है। ईमानदारी से कमाया गया छोटा सम्मान भी बेईमानी से कमाए गए बड़े लाभ से ज्यादा मूल्यवान है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बेईमानी रोकने के लिए हमें छोटे छोटे उपाय अपनाने होंगे। इसके लिए हमें घर में अच्छा वातावरण

0: सकते हैं और अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक कर सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, बेईमानी करने वाला व्यक्ति कभी पूरी तरह शांत नहीं रह सकता। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए। यही डर मानसिक तनाव पैदा करता है। ईमानदार व्यक्ति भले ही कम धन कमाए लेकिन वो चैन की नींद सोता है। उसके मन में अपराध बोध नहीं होता। सच्चाई मन को हल्का और जीवन को सुखी बनाती है। इसी के साथ आपको कहना चाहेंगे श्रोताओं कि छोटी बेईमानी कभी छोटी नहीं होती। वो धीरे धीरे इंसान की आदत, चरित्र और समाज को नुकसान पहुंचाती है। जैसा कि हम आपको कार्यक्रम के माध्यम से यही बात बता रहे हैं, शुरुआत में इसका प्रभाव कम दिखाई देता है अंजलि, लेकिन समय के साथ वो बड़े संकट का रूप लेती है।
0: जी जी।
1: इसलिए हमें अपने जीवन में छोटी से छोटी बात में भी ईमानदारी अपनानी होगी, चाहे कोई देखे या न देखे। सही काम करना ही सच्ची महानता है। यदि हर व्यक्ति संकल्प ले कि वो छोटी बेईमानी भी नहीं करेगा तो समाज में विश्वास, शांति और खुशहाली बढ़ेगी। यही एक अच्छे नागरिक और मजबूत राष्ट्र की पहचान है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। इसी के साथ श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि छोटी बेईमानियां देखने में मामूली लग सकती हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। ये धीरे धीरे विश्वास को खत्म करती हैं, रिश्तों को कमजोर करती हैं और समाज को अंदर से खोखला कर देती हैं। श्रोता साथियों, एक मजबूत समाज की शुरुआत बड़े भाषणों से नहीं बल्कि छोटी छोटी ईमानदार आदतों से होती है।
1: बिल्कुल।
0: जब व्यक्ति अपने व्यवहार में सच्चाई लाता है तभी परिवार मजबूत होता है, समाज सुरक्षित बनता है और देश आगे बढ़ता है। हमें यह समझना होगा श्रोता साथियों कि थोड़ी सी बेईमानी वास्तव में कभी छोटी नहीं होती। हर छोटा गलत कदम भविष्य में बड़ी समस्या बन सकता है। अगर हम चाहते हैं कि

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: अंजलि बोन गीत तो आई शुभ्र ननस की थाते पड़ो सूटा उम्मीद करा कि जे वाते रही कार्यक्रम घूमर में ई आपरी बोनों ने कमी होगा बोने आपने मारो आज नो कार्यक्रम केवो लाग्यो एना पर मैं आप राय सुझाव आली शको आपरे अणा पता माते
1: होवे बोने लिखी लो अमरु पतु है कार्यक्रम घूमर वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान अमरु पिन कोड नंबर है 3200001 अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमरा अणा फोन नंबर माते हमारो फोन नंबर है 9460051234
0: तुबो ने फेरी मलंगा अनास कार्यक्रम में एक ना विषय ने हाथे तार हुदी
1: राम राम राम राम, राम, राम।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आंगनवाड़ी जाई ने तारो नाम लगाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ। सोराना न कब्जू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार। भिंडा तुरिए आलड़ी, कोरा ने वालोर, रोपो खाओ सब्जिए, डीले आवे जोर। सीरो दलियो राबड़ी, फूली सोका दाल, पांचवे महीने बाल ले आ खवानो आल। अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अरे गोरी, इतने सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
2: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
1: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
2: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
1: ये हुई ना बात गोरी।
3: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, रास्ते बंद नहीं होते, सोच बंद हो जाती है। जहां समाधान की रोशनी हो, वहीं से नई शुरुआत होती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ साथियों कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हम हमेशा एक नए विषय को लेकर हाजिर होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो धीरे धीरे इंसान की सोच, व्यवहार और पूरा जीवन बदल सकती है। जी हाँ, समाधान सोचने की आदत। अक्सर साथियों, जब कोई समस्या आती है तो हमारा ध्यान तुरंत समस्या पर चला जाता है। हम ये सोचते हैं कि अब क्या होगा, इतनी परेशानी क्यों आई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है, और यही से फर्क शुरू होता है। समस्या सबके जीवन में आती है साथियों, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो समस्या में फंसता नहीं, समाधान खोजता है। तो आज बातें इस विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम आप सभी को सुनवाएंगे। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि आज हम बात कर रहे हैं समाधान सोचने की आदत को लेकर। जी हाँ साथियों, कई बार समस्या उतनी बड़ी होती नहीं है जितनी हमारी चिंता उसे बना देती है। जब हम बार बार समस्या को ही सोचते रहते हैं तो मन डर से भर जाता है, लेकिन जब हम सोचते हैं तो मन में रास्ता बनता है। यानी कि दोस्तों, समस्या दीवार दिखाती है, समाधान दरवाजा खोलता है। यानी कि बहुत सी बार हम देखते हैं कि समाधान सोचने वाले लोग अलग करते क्या हैं अपने जीवन में। तो साथियों बताना चाहूंगी, वे समस्या से घबराते वबराते नहीं है, पहले समझते हैं कि आखिरकार समस्या क्या है। वे पूछते हैं कि ये क्यों हुआ, इससे निकलने का पहला कदम क्या हो सकता है, मैं क्या बदल सकता हूँ। यही सोच धीरे धीरे आदत बनती है। साथियों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक किसान के खेत में पानी की कमी हो गई। कुछ लोगों ने उससे कहा कि अब फसल खराब हो जाएगी, लेकिन किसान बैठा नहीं। उसने खेत के पास छोटी नाली बनाई, बरसात का पानी रोकना शुरू किया और अगली फसल पहले से बेहतर हुई। फर्क क्या था साथियों? समस्या सबने देखी, लेकिन समाधान एक ने सोचा। इसलिए कहना चाहूंगी कि जहां लोग रुकावट देखते हैं, वहीं कुछ लोग रास्ता बना लेते हैं। इसलिए साथियों, समाधान सोचने की आदत ही हमारे जीवन को बदल सकती है। वो कैसे बदल सकती है? तो दोस्तों, डर को हमें कम करना होगा। जब हल पर ध्यान होता है तो घबराहट कम होती है। हर हल निकलेगा, यह भरोसा होना भी बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है ना कि हम किसी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, तब तक कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज का हल नहीं निकल सकता। इसी के साथ समाधान जो है वो रिश्ते सुधारते हैं। यानी ये झगड़ों में दोष ढूंढने के बजाय हल अगर हम सोचेंगे तो आधी लड़ाई हमारे जीवन की यूं ही खत्म हो जाती है। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि जो हर मुश्किल में रास्ता खोजता है, वह कभी भी जीवन में रुकता नहीं है। इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में हमें शिकायत कम, सवाल ज्यादा करने हैं। क्यों हुआ से आगे अब क्या करें, हमें ये सोचना है। छोटी समस्याओं के छोटे हल खुद निकालने चाहिए दोस्तों। दूसरों की मदद से हमें सीख लेनी है। जल्दबाजी नहीं, समझदारी से सोचें। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि समाधान सोचने वाले लोग हालात के गुलाम नहीं, दिशा के निर्माता बनते हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें चल रही हैं हमारी आपसे। आगे भी कुछ बातें हैं जो यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, जब हालात खराब हो तभी समाधान वाली सोच की असली सूरत होती है। मुश्किल समय में अगर मन सिर्फ डर देखेगा तो हमारे कदम रुक जाएंगे, लेकिन अगर मन हल्क हो जाएगा तो उम्मीद बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों, असली बदलाव कहाँ आता है तो बताना चाहूंगी कि समाधान सोचने की आदत सिर्फ समस्या हल नहीं करती, इंसान को बदलती है। वह शिकायत करने वाला नहीं, रास्ता बनाने वाला बनता है। वह दूसरों का इंतजार नहीं करता, पहला कदम खुद उठाता है। इसलिए जिंदगी बदलती है जब सोच समस्या से हटकर संभावना पर जाती है। कहना चाहूंगी दोस्तों कि मान लीजिए कि घर में कोई परेशानी है, पैसे कम है, काम अटक गया। अगर पूरा ध्यान सिर्फ चिंता पर रहेगा तो तनाव बढ़ेगा, लेकिन अगर परिवार बैठकर सोचे कि अब क्या किया जा सकता है तो वहीं से रास्ता निकलना शुरू होगा। समाधान हमेशा बड़ा नहीं होता, कई बार छोटे कदम ही शुरुआत होते हैं। श्रोता साथियों, समाधान सोचने वाले जो लोग होते हैं वो शिकायत कम करते हैं। वे बार बार यह नहीं कहते कि मेरे साथ क्यों हुआ, वे पूछते हैं कि अब आगे क्या करें, और यही सवाल जीवन की दिशा बदल देता है। जो क्यों में अटकता है वह ठहर जाता है, और जो अब क्या सोचता है वह आगे बढ़ता है। श्रोता साथियों, समस्या आए और हम टूट जाए तो संघर्ष बोझ बन जाता है, लेकिन कहना चाहूंगी कि समस्या आए और हम सीख लें तो वही संघर्ष ताकत बनता है। समाधान सोचने की आदत इंसान को हालात से बड़ा बनाती है। इसलिए हमें हर परेशानी पर खुद से पूछना है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पहला कदम क्या हो सकता है और किससे सीख सकता हूँ। धीरे धीरे मन शिकायत से हटकर हल की ओर जाने लगेगा। जब यह आदत बनती है श्रोता साथियों, तो इंसान डर से कम विश्वास से ज्यादा जीतता है।

साथियों, समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है, उन्हें पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसका सामना कैसे करना है यह हमारी सोच तय करती है। अगर हम बार बार समस्या को ही बड़ा बनाते रहेंगे तो जीवन भारी लगेगा, लेकिन अगर हम समाधान सोचने की आदत बना लें तो वही जीवन अवसरों से भरा लगेगा। समाधान सोचने की आदत जीवन बदलती है, क्योंकि यह हालात नहीं नजरिया बदलती है। तो साथियों, यह थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे भी मैं आपसे कुछ छोटी मोटी बातें अवश्य करूंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को।

क्यों, इस गीत के बाद फिर से हम रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि हम समाधान को लेकर ढेर सारी बातें कर रहे हैं, तो श्रोता साथियों, हमारे लिए समझना जरूरी है कि समाधान सोचने की आदत केवल समस्याओं को हल करने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक परिपक्व दृष्टि है। यह आदत इंसान को हर कठिनाइयों के सामने टूटने के बजाय संभलना सिखाती है। जब व्यक्ति समस्याओं को अंत नहीं बल्कि एक स्थिति मानकर उसके हल की दिशा में सोचता है ना दोस्तों, तभी उसके भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और आगे बढ़ने की शक्ति विकसित होती है। समाधान पर केंद्रित सोच का सबसे बड़ा प्रभाव यह है साथियों कि यह व्यक्ति को निराशा से बाहर निकालती है। जो मन केवल परेशानियों को देखता है वह जल्दी थक जाता है, लेकिन जो मन संभावनाएं खोजता है वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत बनाए रखता है। यही सोच दोस्तों धीरे धीरे व्यवहार बदलती है, निर्णयों को बेहतर बनाती है और जीवन को बोझ से अवसर की ओर ले जाती है। श्रोता साथियों, यह भी सच है कि हर समस्या का हल तुरंत तो नहीं मिलता, लेकिन समाधान सोचने की आदत व्यक्ति को धैर्य रखना सिखाती है। वह जानता है कि रास्ता देर से मिल सकता है, लेकिन मिलेगा अवश्य। यही विश्वास संघर्ष के समय सबसे बड़ी पूंजी बनता है हमारी, और यही विश्वास व्यक्ति को शिकायत करने वाला नहीं दोस्तों, बल्कि कोशिश करने वाला बनाता है। समाज और समुदाय के स्तर पर भी यह सोच उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब लोग समस्या पर चर्चा से आगे बढ़कर समाधान पर विचार करने लगते हैं, तभी सामूहिक बदलाव संभव होता है। परिवार मजबूत होते हैं, समुदाय सहयोगी बनते हैं और विकास की राह खुलती है। इसी दृष्टि से समाधान की सोच केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, सामाजिक शक्ति भी है। इसलिए जीवन बदलने के लिए हमेशा बड़े संसाधन नहीं चाहिए होते हैं, कई बार सिर्फ सोच बदलने की जरूरत होती है। और जब सोच समस्या पर रुकने के बजाय समाधान की ओर बढ़ती है, तभी जीवन में नई दिशा, नया साहस और नई संभावनाएं जन्म लेती है। श्रोता साथियों, समाधान सोचने की आदत जीवन इसलिए बदलती है क्योंकि यह मुश्किलों को खत्म नहीं करती, बल्कि उनसे निपटने की हमारी क्षमता को मजबूत करती है। जहाँ समाधान की सोच जीवित रहती है, वहाँ उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने का समय हो चला है। मैं आपसे विदा अवश्य लूंगी, लेकिन जाने से पहले मैं कार्यक्रम का पता बताना चाहूंगी, ताकि आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

आंगनवाड़ी जाई ने तारो नाम लकाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ। सोराना नक काबजू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार, भिंडा तुरिये आलड़ी, कोरा ने वालोर, रोपो खाओ सब्जिये, डीले आवे जोर। सीरो दलियो राबड़ी, थूली सोका दाल, पांसवे महीने बाल ले आ खवानो आल। अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।